हम हर मीठ लगाए बा, जा नानक रेण साध पग मांगे, हर होए दे आल दवाए बा। जय श्री महला चौथा, जिन हर हृदय नाम नवस्यो, तिन मात की जे हर वांझा, तिन सुंजी दे फिरे बिन नावे, ओए खप खप मोए करांजा। मेरे मन जप राम नाम हर माजा, हर हर किरपाल किरपा प्रवतारी, गुर ज्ञान दियो मन समझा रहाओ। हर कीर्त कल जुग पद उत्तम, हर पाइये सतगुर माजा, हों बलिहारी सतगुर अपने, जिन गुप्त नाम परगाजा। दर्शन साध मिलियो बड़ पागी, सब किलविक गए गवाजा, सतगुर साहो पाया बड़ दाना, हर किए बहु गुण सांझा, जिन को कृपा करी जग जीवन, हर उर तारियो मन माजा, धर्म राय दर कागद फारे, जन नानक लेखा समझा। जय श्री महला चौथा, सत संगत साध पाई बड़ पागी, मन चल तो प्यो अरूड़ा, आन हाथ तुन बाजे नित बाजे, हर अमृत तारा सलीड़ा। मेरे मन जप राम नाम हर रूड़ा, मेरे मन तन प्रीत लगाई सतगुर, हर मिलियो लाए जपीड़ा रहाओ। साकत बंद पै है माया, विख संचे लाए जकीड़ा, हर कै अर्थ खर्च नह साके, जमकाल सहे सिर पीड़ा। जिन हर अर्थ शरीर लगाया, गुर साधु बहु सरदा, लाए मुख तूड़ा, हलत पलत हर शोभा पावह, हर रंग लगा मन गूड़ा, हर हर मेल मेल जन साधु, हम साज ना का कीड़ा, जन नानक प्रीत लकी पग साध, गुर मिल साधु पा खान हरियो मन मूड़ा। जैत श्री महला चौथा कर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, हर हर सिमरो अगम पारा, जिसमृत दुख मिटे हमारा, हर हर सतगुर पुरख मिलावो, गुर मिलिए सुख होई राम, हर गुण गावो मीत हमारे, हर हर नाम रखो उर तारे, हर हर अमृत बचन सुनावो, गुर मिलिए प्रगट होई राम, मधुसूदन हर माधो प्राणा, मेरे मन तन अमृत मीठ लगाना, हर हर दया करो गुर मिलो, पुरख निरंजन सोई राम, हर हर नाम सदा सुखदाता, हर के रंग मेरा मन राता, हर हर महापुरख गुर मिलो हो, गुर नानक नाम सुख होई राम। जैत श्री महला चौथा, हर हर हर हर नाम जपाहा, गुरमुख नाम सदा लैलाहा, हर हर हर हर भगत जड़ावो, हर हर नाम अमाहा राम, हर हर नाम दयाल प्याहा, हर कै रंग सदा गुणगा, हर हर हर जस कुमर पावो, मिल सतसंग अमाहा राम, आओ सखी हर मेल मलाहा, सुन हर कथा नाम लैलाहा, हर हर कृपा तार गुर मिलो, गुर मिलिए हर अमाहा राम, कर कीरत जस अगम अथा, खिन खिन राम नाम गवाहा, मोको तार कृपा मिलिए, गुरदाते हर नानक भगत अमाहा राम। जैत श्री महला चौथा, रस रस राम रसाल सलाहा, मन राम नाम पीना लैलाहा, खिन खिन भगत करे दिन राते, गुरमत भगत अमाहा राम, हर हर गुण गोविंद जपाहा, मन तन जीत शब्द लै लाहा, गुरमत पंच दूत बस आवह, मन तन हर अमाहा राम, नाम रतन हर नाम जपार, गुण गाय सदा लै लाहा, दीन दयाल कृपा कर माधो, हर हर नाम अमाहा राम, जप जगदीश जपो मन महा, हर हर जगनाथ जग लाहा, तन तन बड़े ठाकुर प्रा मेरे, जप नानक भगत अमाहा राम। जैत श्री महला चौथा, आपे जोगी जुगत जगाहा, आपे निरपो ताड़ी लाहा, आपे ही आप वरते, आपे नाम अमाहा राम, आपे दीप लो दीपाहा, आपे सतगुर समुंद मथाहा, आपे मत मत तत् कढ़ाए, जप नाम रतन अमाहा राम, सखी मिलो हो मिल गुण गावाहा,
ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪੋ ਹਰ ਲਾਹਾ, ਹਰ ਹਰ ਭਗਤ ਦ੍ਰਿੜੀ ਮਨ ਪਾਈ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਅਮਾਹਾ ਰਾਮ, ਆਪੇ ਵੜਦਾ ਨਾ ਵੜ ਸਾਹਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਪੂੰਜੀ ਨਾਮ ਵਸਾਹਾ, ਹਰ ਹਰ ਦਾਤ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭਾਵੇ, ਗੁਣ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਅਮਾਹਾ ਰਾਮ। ਜੈਤ ਸ੍ਰੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਮਿਲ ਸਤ ਸੰਗਤ ਸੰਗ ਗੁਰਾਹਾ, ਪੂੰਜੀ ਨਾਮ ਗੁਰਮੁਖ ਬੇਸਾਹਾ, ਹਰ ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਮਧਸੂਦਨ, ਮਿਲ ਸਤ ਸੰਗ ਅਮਾਹਾ ਰਾਮ। ਹਰ ਗੁਣ ਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਸੁਣਾਹਾ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਲਾਹਾ, ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਗੁਣ ਬੋਲੇ ਬਾਣੀ, ਹਰ ਗੁਣ ਜਪ ਅਮਾਹਾ ਰਾਮ। ਸਭ ਤੀਰਥ ਵਰਤ ਜਗ ਪੁੰਨ ਤੁਲਾਹਾ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਪੂਜਹਿ ਪੁਜਾਹਾ, ਹਰ ਹਰ ਤੁਲ ਤੋਲ ਤਾ

एक ओंकार सतगुर प्रसाद आव मैं सुख पायो गुर आज्ञा तजी सियाण बचिंत बिसारी अहों छोड़ियो है त्याग रहाओ जो देखो तो सगल मोहे मोहियो तो सरन परियो गुर पाग कर कृपा टैल हर लायो तो जम छोड़ी मोरी लाग तरियो सागर पाप को जो संत पेटे बड़ पाग जन नानक सर्व सुख पाए मोरो हर चरणी चित लाग जैत श्री महला पंजवा मन में सतगुर ध्यान तरा दृढ़ ज्ञान।

एक निरंजन गाइए सब अंतर सोई, कण कण समरथ प्रभ जो करे सो होई। खिन में थाप अथाप दा तिस बिन नहीं कोई, खंड ब्रह्मंड पताल दीप रविया सब लोई। जिस आप बजाए सो बुझसी निर्मल जन सोई। सलोक रचंत जी रचना मात गर्भ अस्थापनंग सास सास समरंत नानक महा अगन न बनासनंग। मुख तले पैर उपरे बसंदड़ो कहतड़े थाए, नानक सो तनी क्यों बसारियो उदर है जिस दैनाए। पौड़ी रक्त बिंद कर निम्या अगन उदर मझार, ओज मुख कचील विकल नानक कोर गवार। हर सिमरत तू ना जले मन तन और तार, बिखम थानो जिन रखिया तिस तिल ना बसार। प्रभ विसरत सुख कदे नाहे जासे जन महार। सलोक मन इच्छा दान करनंग सर्वत्र आसा पूरने, खंडनंग कल कले से प्रभ सिमर नानक नह दूर नेह। हब रंग माने जिस संग तैस्यों लाइए नेहो, सो शौ बिंद ना विसरो नानक जिन सुंदर रचिया देहो। पौड़ी ज्यो प्राण तन तन दिया दीने रसपोक, ग्रह मंदर रथ हास ग्रह मंदर रथ रथ आस दिए रच भले संजोग। सुन बिनता साजन सेवक दिए प्रव देवन जोग। हर सिमरत तन मन हरिया लाहे, हर सिमरत तन मन हरिया लह जाए बिजोग। साध संग हर गुण रमोह बिन से सब रोग। सलोक टंब जतन करण माया अनेक उद्यमे, हर भगत पावहीन नानक प्रव विसरत तै प्रेत तेहे। तुतड़ियां सा प्रीत जो लाई बयान स्यों, नानक सच्ची रीत साई सेती रत्या। पौड़ी जिस विसरत तन भस्म हुए कहते सा प्रेत, खेन ग्रह में बसन न देवे ही जिन स्यों सोई हेत। कर अनारथ दर्व संचया सो कार्य केत, जैसा बीजे सोलने कर में हो खेत। अकिरत कण हर विसरिया जोनी परमेत। सलोक कोट दान इस नानक अनक सोधन पवित्र तह, उचरंत नानक हर हर रसना सर्व पाप मचुते। उचरंत नानक हर हर रसना सर्व पाप मचुते। ईतनक तुम कणा पूरी दतीम पाहे, मन बसंदड़ो सच सौ नानक हब्बे दुखड़े।

बल जाओ। सलोक ग्रह रचना अपारंग मन बलास स्वादंग रसै कतांच नह समरंत नानक ते जंत बिस्टा किर मेह मुच अडंबर हब कहो मज महाबत नेह। सो साई जय विसरै नानक सो तन खे पावड़ी सुंदर सेज अनेक सुख रास भोगण पूरे ग्रह सोइन चंदन सगंध लाए मोती हीरे। मन इच्छे सुख माण दा किश नाहे बसूरे सो प्रभ चित न आवे बिष्टा के कीरे। बिन हर नाम ना शांत होए कित विद मन तीरे। सलोक चरण कमल बिरहंग खोजंत बैरागी दै दिसे त्यागंत कपट रूप माया नानक आनंद रूप साध संग मेह। मन साई मुख उचरा बत्ता हबे लो नानक हब अडंबर कूड़िया सुन जीवा सच्ची सोए। पावड़ी बस्ता टूटी चौंपड़ी चीर सब छिन्ना जात न पत न आदरो अध्यान परमिना। मित्र न इठ तन रूपहीन किश साग साक न सिन्ना राजा सगली श्रेष्ठ का हर नाम मन पिन्ना। तिसका तिसकी तूड़ मन उदरे प्रभ होए सो प्रसन्ना। श्लोक अनक लीला राज रस रूपंग शतर चमर तख्त आसनंग रचांत मूड़ अज्ञान अंधे नानक सुपन मनोरथ माया। सुपने हब रंग माणिया मिठा लगड़ा में हो सुपने हब रंग माणिया मिठा लगड़ा मोहो नानक नाम बहुनिया सुंदर माया त्रोहो। पौड़ी सुपने सेती चित मूर्ख लाया बिसरे राज रस भोग जागत पखलाया। आर जा गई बिहाए तंदे ताया पूर्ण पै ना काम मोहया माया। क्या बेचारा जानत जा आप पुलाया। सलोक बसंत स्वर्ग लोके जितते पृथ्वी नव खंडने बिसरंत हर गो पाले नानक ते प्राणी उद्यान परमणे। कौतक कोड तमाशया चेतना आवसनाओ नानक कोड़ी नरक बराबरे ओजड़ सोई थाओ। पौड़ी महाप्यान अध्यान नगर कर मान्या झूठ समगरी पेक सच कर जान्या। काम क्रोध अंकार फिरे दे बान्या सिर लागा जम डंड ता पछतान्या। बिन पूरे गुरदेव फिरे शैतान्या। सलोक राज कपटंग रूप कपटंग तन कपटंग कुल गर्व ते संचंत विख्या शलंग शिदरंग नानक बिन हर संग ना चालते। पखंदड़ो की पुल तुम्मा तिसम सोना अड़ना लहंदड़ो मोल नानक साथ ना जुली माया।

0: को रांकना दंग आल बंधन कुसम बासने चरण कमल रचांत सांते नानक आन न रुचते मुखड खाऊ पलक छड आन देऊ चित जीवन संगम तिस तनी हर नानक संता मित पौड़ी ज्यो मछली बिन पानी क्यों जीवन पावै बूंद बहूना चातर को क्यों करतर पतावै नाद करांके वेदिया सनमुख उठतावै पवर लोभी कुसम बास का मिल आप बंदावै त्यों संत जना हर प्रीत है देख दर्श कावै सलोक चितवंत चन कमलंग सास सास अराधने नै बिसरंत ना अचुत नानक आस पूर्ण परमेश्वर है शीतला मन मजाहे पलक ना थीवे बाहरा नानक आसड़ी नवाहे सदा पखंदो सच तनी पौड़ी आसा बंती आस गसाई पूरी है मिल गोपाल गोविंद न कबहू चूरी है देहो दर्श मन चाओ लह जाए बसूरिये होए पवित्र शरीर चरना तूरिये पार ब्रह्म गुर देव सदा हजूरिये सलोक रसना उचरंत नामंग सर्वनग सुनंत शब्द अमृत है नानक तिन सद बलिहारंग जिना ध्यान पार ब्रह्मणे हब कूड़ावे कम इक साई बाहरे नानक सेई तन जिना पिर हड़ी सच स्यों पौड़ी सद बलिहारी तिना जे सुनते हर कथा पूरे ते प्रदान नवावे प्रभ मथा हार जस लिखे बेअंत सोहे से हथा चरण पनीत पवित्र चाले प्रभ पथा संता संग उदार सगला दुख लथा सलोक पावी अदोत करणंग हर रमणंग संजोग पूरण है
1: नानक सो महूर्त कीम न सका पाए सुख मते हो बाहरे नानक सामे वेलड़ी परवान जित मिनंदड़ो मां पेरे पौड़ी ऐसा वेला कहो कौन है जित प्रभ को पाई सो मूर्त पला संजोग है जित मिले गुसाई आठ पैर हर त्याई के मन इच पुजाई वड्डे भाग सतसंग होए निव लागा पाई मन दर्शन की प्यास है नानक बल जाई सलोक पतित पनीत गोबिंदे सर्ब दोख निवारने सरन सोर भगवाने जपंत नानक हर हर हरे छड़ेओ हब आप लगड़ो चरना पास नठड़ो दुख ताप नानक प्रभ पखंदया पौड़ी मेल लेहो दयाल ढह पहे दुआरिया हर लेवो दीन दयाल परमत बोहारिया भगत वचन तेरा बिरद हर पतित उधारिया तुझ बिन नाही कोई है बिनो मोहे सारिया कर गह लेहो दयाल सागर संसारिया सलोक संत उधरन दयालंग आसरंग गोपाल कीर्तने निर्मलंग संत संगेन ओट नानक परमेश्वर चंदन चंदन सरद रुत मूल न मिटी कहम शीतल थी वे नानका जपंदड़ो हर नाम पौड़ी चरण कमल की ओट उधरे सगल जन सुन परताप गोविंद निरभौ भये मन तोट न आवे मूल संचया नाम धन संत जना स्यों संग पाइए वड्डे पुन आठ पहर हर त्याए हर जस नित सुन सलोक दयाल दया करन दुख हरनन उचरंग नाम कीर्तने दयाल पुरख भगवाने नानक लिपत ना माया पाहे बुलंदड़े बुझ गई रखंदड़ो प्रभ आप जिन उपाय मेद ने नानक सो पुरख जा नानक जो प्रभ जाप पौड़ी ने जा प्रभ पहे दयाल ना व्यापे माया कोट अगा गए नास हर ਇੱਕ ਧਿਆਇਆ ਨਿਰਮਲ ਭਏ ਸਰੀਰ ਜਨ ਧੂਰੀ ਨਾਇਆ ਮਨ ਤਨ ਭਏ ਸੰਤੋਖ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਤਰੇ ਕੁਟੁੰਬ ਸੰਗ ਲੋਕ ਕੁੱਲ ਸਭਾਇਆ ਸਲੋਕ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਪਾਲ ਗੁਰ ਪੂਰਨ ਨਾਰਾਇਣ ਗੁਰ ਦਿਆਲ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪਤਿਤ ਉਧਾਰਨੇ ਭੌਜਲ ਬਿਖਮ ਅਸਗਾਹ ਗੁਰ ਬੋਹੇ ਥੇ ਤਤਾਰਿਅਮ ਨਾਨਕ ਪੂਰ ਕਰਮ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨੀ ਲੱਗਿਆ ਪੌੜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜਿਸ ਸੰਗ ਹਰ ਜਪੇ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾਲ ਜਬ ਭਏ ਤਾਂ ਅਵਗੁਣ ਸਭ ਛਪੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰਦੇਵ ਨੀਚੋਂ ਉੱਚ ਥਪੇ ਕਾਟ ਸਿਲਕ ਦੁੱਖ ਪਾਇਆ ਕਰ ਲੀਨੇ ਅਪ ਦਸੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਬੇਅੰਤ ਰਸਨਾ ਹਰ ਜਸੇ ਸਲੋਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੰਤ ਏਕੋ ਸੁਨਯੰਤ ਏਕੋ ਵਰਤੰਤ ਏਕੋ ਨਰ ਹਰੈ ਨਾਮ ਦਾਨ ਜਾ ਚਿੰਤ ਨਾਨਕ ਦਿਆਲ ਪੁਰਖ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਹਿਕ ਸੇਵੀ ਹਿਕ ਸੰਮਲਾ ਹਰ ਇਕਸ ਪੈ ਅਰਦਾਸ ਨਾਮ ਵੱਖਰ ਧਨ ਸੰਚਿਆ ਨਾਨਕ ਸੱਚੀ ਰਾਸ ਪੌੜੀ ਪ੍ਰਭ ਦਿਆਲ ਬੇਅੰਤ ਪੂਰਨ ਇੱਕ ਇਹ ਸਭ ਕਿਛ ਆਪੇ ਆਪ ਦੂਜਾ ਕਹਾਂ ਕਹੋ ਆਪ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭ ਦਾਨ ਆਪੇ ਆਪ ਲੇਹੋ ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਹੁਕਮ ਸਭ ਨਿਚਲ ਤੁਧ ਥਿਓ ਨਾਨਕ ਮੰਗੇ ਦਾਨ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ ਜੈਤ ਸ੍ਰੀ ਬਾਣੀ ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਥ ਕਛੂਆ ਨਹਾ ਜਾਨੋ ਮਨ ਮਾਇਆ ਕੇ ਹਾਥ ਬਿਕਾਨੋ ਰਹਾਓ ਤੁਮ ਕਹੀਏਤ ਹੋ ਜਗਤ ਗੁਰ ਸੁਆਮੀ ਹਮ ਕਹੀਏਤ ਕਲਯੁਗ ਕੇ ਕਾਮੀ ਇਨ ਪੰਚਨ ਮੇਰੇ

ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भौ निर्वैर अकाल मूरत जूनी सह भंग गुर प्रसाद राग टोडी महला चौथा घर पहला हर बिन रह न सके मन मेरा मेरे प्रीतम प्राण हर प्रभ गुर मेले बहर न पवजल फेरा रहाओ मेरे हीरे लोच लगी प्रभ केरी हर नैनो हर प्रभ हेरा सतगुरु दयाल हर नाम दृढ़ाया हर पाथर हर प्रभ केरा हर रंगी हर हर नाम प्रभ पाया हर गोविंद हर प्रभ केरा हर हृदय मन तन मीठा लागा मुख मस्तक भाग चंगेरा लोभ विकार जिना मन लागा हर विसरिया पुरख चंगेरा ओए मनमुख मूड़ अज्ञानी कहिए तिन मस्तक भाग मंदेरा विवेक बुद्ध सतगुर ते पाई गुर ज्ञान गुरु प्रभ केरा जन नानक नाम गुरु ते पाया तुर मस्तक भाग लिखेरा टोडी महला पंजवा घर पहला दोप दे एक ओंकार सतगुरु प्रसाद संतन अवर न काहू जानी बेपरवाह सदा रंग हर कै जाको पाख स्वामी रहाओ ऊच समाना ठाकुर तेरो अवर न काहू तानी टोडी महला पंजवा घर पहला दोप दे एक ओंकार सतगुरु प्रसाद संतन अवर न काहू जाने बेपरवाह सदा रंग हार के जाको पाख स्वामी रहाओ ऊच समाना ठाकुर तेरो अवर न काहू ताने ऐसो अमर मिलियो भगतन को राज रहे रंग ज्ञाने रोग सोग दुख जरा मरा हर जने नहीं निकटाने निरपो होए रहे लिव एके नानक हर मन मानी टोडी महला पंजवा हर बिसरत सदा खुआरी तांको तोखा कहां पे आपे जांको ओट तुहारी रहाओ बिन सिमरन जो जीवन बलना सर्प जैसे अरजारी नवखंड को राज कमावे अंत चले गो हारी गुण दान गुण तिन ही गाए जाको कृपा तारी सो सुखिया धन ओ जन्मा नानक तिस बलिहारी टोडी महला पंजवा घर दूजा चौप दे एक ओंकार सतगुरु प्रसाद तायो रे मन दह दिस तायो माया मगन स्वाद लोभ मोहयो तिन प्रभ आप भुलायो रहाओ हर कथा हर जस साध संगत स्यो एक मोहत ना एहो मन लायो बिगस्यो पेख रंग कुसुंब कहो पर ग्रह जोहन जायो चरण कमल स्यो पाओ हो ना कीनो न सत पुरख मनायो तहवत को तावे भौ पाते ज्यो तेली बलदह परमायो नाम दान स्नान ना कियो एक निमख न कीरत गायो नाना झूठ लाए है मन तोख्यो न बुझियो अपनायो पर उपकार न कब हो किए नहीं सतगुरु सेवते आयो पंच दूत रच संगत गोष्ट मतवारो मत मायो करो बेनती साध संगत हर भगत वचल सुन आयो नानक भाग परयो हर पाछे राख लाज अपनायो टोडी महला पंजवा मानुख बिन बूझे बिरथा आया अनेक साज सिगार भौ करता जो मृतक उठाया रहाओ ताए ताए किरपन शर्म कीनो एकत्र करी है माया दान पुन नहीं से संतन सेवा कित ही काज ना आया कर अपहरण सवारी से जा कामन थाट बनाया संग न पायो अपने परते पेख पेख दुख पाया सारो दिनस मंजूरी करता तो मुसले शराया खेद भयो बैगारी न्याई घर के काम न आया भयो अनुग्रह जाको प्रभ को तिसे हृदय नाम बसाया साध संगत के पाछे परयो जन नानक हर रस पाया

कृपा नित बसो हृदय हर नीत तह तहसी बुद्ध करो परगासा लागे प्रभ संग प्रीत रहाओ दास तुम्हारे की पावो तूरा मस्तक ले ले लावो महापतित ते होत पनीता हर कीर्तन गुण गावो आज्ञा तुमरी मीठी लाह लागो कियो तुहारो पावो जो तुम दे तही एह तृप्ते आन कथो ताह तावो सधी निकट जानो प्रभ स्वामी सगल रेन होए रहे साधु संगत होए परापत ता प्रभ अपना लहिए सदा सदा हम शोरे तुमरे तुम प्रभ हमरो मीरा नानक बारक तुम मात पिता मुख नाम तुहा तुम्हारो खीरा टोडी महला पंजवा घर दूजा दोप दे एक ओंकार सतगुरु प्रसाद मांगो दान ठाकुर नाम अवर कछु मेरे संग न चाले मिले कृपा गुण गाम रहाओ राजमाल अनेक भोग रस सगल तरवर की शाम ताए ताए बहो विदेह को तावे सगल निरार्थ काम बिन गोविंद अवर जे चाह चाहो दिसे सगल बात है खाम कहो नानक संतरेन मांगो मेरो मन पावे विश्राम टोडी महला पंजवा प्रभ जी को नाम मने साधारे जी प्राण सुख इस

नाम सखाई सदा मेरे संग हर नाम को नाम मोको निसतारे बिखे बिलास कहिए तुबह तेरे चलत ना कछु संगारे इष्ट मीत नाम नानक को हर नाम मेरे भंडारे टोडी महला पंजवा निके गुण गावो मिट ही रोग मुख उज्जल है मन निर्मल होई है तेरो रहे यहाँ उहाँ लोग रहाओ चरण पखार करो गुर सेवा मने जरावो भोग छोड़ आपत बाद अहंकारा मान सोई जो होग संत टहल सोई है लागा जिस मस्तक लिखिया लिखोग कहो नानक एक बिंदु जा अवर न करने जोग डोडी महला पंजवा सतगुरु आयो सरन तुहारी मिले सुख नाम हर सोबा चिंता लाहे हमारी रहाओ अवर न सूजे दूजी ठाहर हार परयो तो द्वारी लेखा छोट अलेखे छोटे हम निर्गुण लेहो उबारी ए सद बख्शंद सदा मेहरवाना सबना दय अदारी नानक दास संत पाछे परयो राख लेहो ए बारी टोडी महला पंजवा रसना गुण गोपाल नित गायन शांत सहज रहस मन उपजो सगले दुख पलायन रहाओ जो मांगे सोई सोई पावे सेव हर के चरण रसायन जन्म मरण दोहों ते छूटे भव जल जगत तरायन खोजत खोजत तत बिचार्यो दास गोविंद परायन अबनासी खेम चाहे जे नानक सदा सिमर नारायण टोडी महला पंजवा निंदक गुर कृपा ते हाट्यो पार ब्रह्म प्रभे दयाला शिव कै बाण सिर काट्यो रहाओ काल जाल जम जोहे ना साके सच न पंथा थाट्यो खात खर्चत किछ निखटत नाही राम रतन धन खाट्यो पसमा भूत हुआ खिन पीतर अपना किया पाया आगम नाही राम रतन धन खाट्यो पसमा भूत हुआ खिन पीतर अपना किया पाया आगम निगम कहे जन नानक सब देखे लोक सब आया टोडी महला पंजवा किरपन तन मन किल विख परे साध संग भजन कर स्वामी ढाकन को एक हरे रहाओ अनेक शिदर बोहित के छुटकत थाम ना जाही करे जिसका बोहित तिस आराधे खोटे संग खरे गली सैल उठावत जाहे ओहे ओहा ही है तरे जोर सकत नानक किछ नाही प्रभ राखो सरन परे टोडी महला पंजवा हर के चरण कमल मन ते आयो हर के चरण कमल मन ते आओ काढ़ ठकुठार पित बात हंता औखद हर को नाओ रहाओ तीने ताप निवार नहारा दुख हंता सुख रास ताको बिगना को लागे जाकी प्रभ आगे अरदास संत प्रसाद वैद नारायण कर्ण कारण प्रभ एक बाल बुद्ध पूर्ण सुखदाता नानक हर हर एक टोडी महला पंजवा हर हर नाम सदा सद जाप धार अनुग्रह पार ब्रह्म स्वामी वसदी कीनी आप रहाओ जिसके सह फिर तिन्ही समाले बिन से सोग संताप हाथ दे राखे जन अपने हर होए माई बाप जी संत होए मेहरवाना दया तारी हर नाथ नानक सरन परे दुख पंजन जांका बट परताप टोडी महला पंजवा स्वामी सरन परे दरबारे कोट अपराध खंडन के दाते
तुझ बिन कौन उधारे, रहाओ खोजत खोजत बहु प्रकारे, सर्ब अर्थ विचारे, साध संग परमगत पाइये, माया रच बंद हारे, चरण कमल संग प्रीत मन लागी, सुर जन मिले प्यारे, नानक अनंत करे हर जप, जप सगले रोग निवारे, टोडी महला पंजवा घर तीजा चौप दे एक ओंकार सतगुर प्रसाद, हाँ हाँ लह लपट्यो रे मूड़े कछु न थोरी, तेरो नहीं सो जानी मोरी, रहाओ आपन राम ना चीनो किनुआ, जो पराई सो अपनी मनुआ, नाम संगी सो मन ना बिसायो, छोड़ जाहे वाहु चित लायो, सो संचो जित भूख तिसायो, अमृत नाम तोसा नहीं पायो, काम क्रोध मोह कोप परिया, गुर प्रसाद नानक को तरिया, टोडी महला पंजवा हमारे एक हरी हरी, आन अवर सियान ना करी, रहाओ वड्डे भाग गुर अपना पायो, गुर मोको हर नाम दृढ़ायो, हर हर जाप ताप ब्रत नेमा, हर हर त्याए कुशल सब खेमा, अचार व्यवहार जात हर गुनिया, महा आनंद कीर्तन हर सुनिया, कहो नानक जिन ठाकुर पाया, सब किछ तिसते ग्रह तिसके ग्रह मैं आया, टोडी महला पंजवा घर चौथा दोप दे एक ओंकार सतगुरु प्रसाद, रूड़ो मन हर रंगो लोड़े, गाली हर निह ना होए, रहाओ हों टुडेंदी दर्शन कारण, बीथी बीथी पेखा गुरमिल परम गवाया है, ए बुद्ध पाई है साधु कनो, लेख लिखियो तुर माथे, ए बिद नानक हर नैन अलोए, टोडी महला पंजवा गर्भ गहलड़ो मोरड़ो हियो रे, हियो महराज री मायो, दीहर न्यायी मोहे फाक्यो रे, रहाओ कणो कणो कणो सद लोड़े, बिन लहने कैठे पायो रे, महराज रो गाथ वाहों स्यों, लुबड़ियो नह भागड़ो पाहे संजोयो रे, सुन मन सीख साधु जन सगलो, थारे सगले पराशत मिट्यो रे, जाको लहनो महराज री गाठ गाठड़ियो, जन नानक गरबास ना पड़ियो रे, टोडी महला पंजवा घर पंजवा दोप दे एकोंकार सतगुरु प्रसाद, ऐसो गुण मेरो प्रभ जी कीन, पंच दोख अर अंग रोग ए तन ते सगल दूर कीन, रहाओ बंधन तोर शोर बेख्या ते गुर को शब्द मेरे हीरे दीन, रूप अनरूप मोरो कछ ना बिचार्यो, प्रेम गहो मोहे हर रंग पीन, पेख्यो लालन पाट बीच खोए आनंद चिता हरखे पतीन, तिस ही को ग्रह सोई प्रभ नानक को ठाकुर तिस ही को तीन, टोडी महला पंजवा माई मेरे मन की प्रीत, एही कर्म धर्म जप एही राम नाम निर्मल है रीत, रहाओ प्राण आधार जीवन धन मोरै, देखन को दर्शन प्रभ नीत, बाट घाट तो संग मोरै, मन अपने को मैं हर सखा कीत, संत प्रथाद पय मन निर्मल कर कृपा अपने कर लीत, सिमर सिमर नानक सुख पाया, आद जुगाद भगतन के मीत, टोडी महला पंजवा प्रभ जी मिल मेरे प्राण, बिसर नहीं निमख हीरे ते अपने भगत को पूर्ण दान, रहाओ खोवो हम परम राख मेरे, प्रीतम अंतर जामी सुगड़ सुजान, कोट राज नाम धन मेरा, अमृत दृष्ट धारो प्रभ मान,
आठ पहर रसना गुण गावे, जस पूर कावे समरथ कान, तेरी सरन जियन के दाते, सदा सदा नानक कुर्बान। टोडी महला पंजवा, प्रभ तेरे पग की धूर, दीन दयाल प्रीतम मन मोहन, कर कृपा मेरी लोचा पूर। रहाओ दै दिस रव रहा, जस तुमरा अंतर जामी सदा हजूर। जो तुमरा जस गावे, करते से जन कभू न मरते चूर। धंद बंद बिन से माया के, साधु संगत मिटे बसूर। सुख संपत भोग इस जी के, बिन हर नानक जाने कूर। टोडी महला पंजवा, माई मेरे मन की प्यास, एक खिन रह ना सको बिन प्रीतम। दर्शन देखन को तारी मन आस। रहाओ सिमरो नाम निरंजन, करते मन तन ते सब किल विखनास। पूरन पार ब्रह्म सुख दाते, अबनासी बिलम जाको जास। संत प्रसाद मेरे पूर मनोरथ, कर कृपा भेटे गुणदास। शांत सहज सुख मन उपजियो, कोट सूर नानक परगास। टोडी महला पंजवा, हर हर पतित पावन, जी प्राण मान सुख दाता, स्वामी मन को पावन। रहाओ सुंदर सुगड़ चतर सब बेता, रिद दास निवास भगत गुण गावन। निर्मल रूप अनूप स्वामी, कर्म भूम बीजन सो खावन। बिनस बिस्मन बिस्म भय बिस्मादा, आन न थियो आन न बियो दूसर लावन। रसना सिमर सिमर जस जीवा, नानक दास सदा बल जावन। टोडी महला पंजवा, माई माया शल, त्रिन की अगन मेघ की छाया, गोबिंद भजन बिन हर का जल। रहाओ छोड़ सियानप बहु चतुराई, दोए कर जोड़ साध मग चल। सिमर स्वामी अंतर जामी, मानुख देखा एहो उत्तम फल। बेद बेखियन करत साधु जन, भागहीन समझत नहीं खल। प्रेम भगत राचे।

परमेश्वर कोट फला दर्शन गुरु डीठे रहाओ। गुण गावत चुत अबनासी काम क्रोध बिनसे मद नटीठे अस्थिर भय ए साच रंग राते जन्म मरण बहुर नहीं पीठे बिन हर भजन रंग रस जेते संत दयाल जाने सब झूठे नाम रतन पायो जन नानक नाम बिहून चले सब मूठे। टोडी महला पंजवा साध संग हर हर नाम चितारा सहज आनंद होवे दिन राते अंकर भलो हमारा रहाओ। गुरपुरा भेट्यो बडभागी जाको अंत न पारा वारा कर गै काढ़ लियो जन अपना बिख सागर संसारा। जन्म मरण काटे गुर बचने बहड़ न संकट द्वारा नानक सरन गही स्वामी की पुनः पुनः नमस्कारा। टोडी महला पंजवा माई मेरे मन को सुख कोट आनंद राज सुख भग भगवे हर सिमरत बिन से सब दुख रहाओ। कोट जन्म के किल विखनासन सिमरत पावन तन मन सुख देख स्वरूप पूर्ण पई आसा दर्शन भेटत उतरी भुख। चार पदार्थ अष्ट महासिद काम तेन पार जात हर हर रुख नानक सरन गही सुख सागर जन्म मरन फिर गर्भ ना दुख। टोडी महला पंजवा हर हर चरण हृदय उरतारे सिमर स्वामी सतगुर अपना कार्य सफल हमारे रहाओ। पुन दान पूजा परमेश्वर हर कीरत तत विचारे गुण गावत अतुल सुख पाया ठाकुर अगम अपारे। जो जन पार ब्रह्म अपने कीने तिनका बहुर कछ ना बिचारे नाम रतन सुन जप जप जीवा हर नानक कंठ मजारे। टोडी महला नौवा एक ओंकार सतगुरु प्रसाद कहो कहां अपनी अध माई उर्ज्यो कनिक कामने के रस न कीरत प्रभ गाई रहाओ। जग झूठे को साच जान कै तांस्यो रुच उपजाई दीन बंद सिमरियो नहीं कबहू होत जो संग सहाई। मगन रहो माया में निस दिन छूटी ना मन की काई कह नानक अब नाहे अनंत गत बिन हर की सरनाई। टोडी बाणी भगता की एक ओंकार सतगुरु प्रसाद कोई बोले निवरा कोई बोले दूर जल के माछली चरे खजूर काए के बकबाद लायो जिन हर पायो तने छपायो रहाओ। पंडित होए कै बेद बखाने मूर्ख नाम दियो रामे जाने कौन को कलंक रहो राम नाम लेत ही पतित पवित पहे में राम कहतरी रहाओ। राम संग नाम देव जन को प्रतिज्ञा आई एकादशी व्रत रहे काहे को तीर्थ जाए। पनत नाम देव सुकिरत सुमत पहे गुरमत राम कह को ना बेखुंट गए तीन संदे खेल आछे रहाओ। कुमार के कर हांडी आछे राजा के कर सांडी को बामन के कर रांडी आछे रांडी सांडी हांडी गो बाणिये के कर हींग आछे पेसर मांगे सिंग गो।

संता मदे गोबिंद आछे गोकल मदे श्याम गो नामे मदे राम आछे राम श्याम गोबिंद गो राग बैराड़ी महला चौथा घर पहला दोप दे एक ओंकार सतगुरु प्रसाद सुन मन अकथ कथा हर नाम रिद बुद्ध सिद्ध सुख पावे पज गुरमत हर हर राम ना राम राम रहाओ नाना ख्यान पुराण जस उत्तम खट दर्शन गावे राम शंकर करोड़ तैतीस त्याओ नाही जान्यो हर मर माम सुर नर गण गंधर्व जस गावे सब गावत धनजेत उपाम नानक कृपा करे हर जन को ते संत भले हर राम बैराड़ी महला चौथा मन मिल संत जना जस गायो हर हर रतन रतन हर नीको गुर सतगुर दान दिवायो रहाओ तिस जन को मन तन सब देवो जिन हर हर नाम सुनायो तन माया संपे तिस देवो जिन हर मीत मिलायो खिन के चंत कृपा करी जगदीसर तब हर हर हर जस त्यायो जन नानक को हर भेटे स्वामी दुख होमे रोग गवायो बैराड़ी महला चौथा हर जन राम नाम गुण गावे जे कोई निंद करे हर जन की अपना गुण ना गवावे रहाओ जो किस करे सो आपे

हर राखे उधर मन जा रहा, सो ऐसा हर सेवो मेरे मन, हर अंत छिदावन हारा, जाके हृदय बसया मेरा हर हर, तिस जन को करो नमस्कारा, हर कृपा ते पाईगे हर जप नानक नाम अधारा, बैराड़ी महला चौथा जप मन हर हर नाम, नित ते आए जो इच्छे सोई फल पावे, फिर दुख ना लागे आए रहाओ, सो जप सो तप सा बर्त पूजा, जित हर स्यों प्रीत लगाए, बिन हर प्रीत होर प्रीत सब झूठी, एक खिन मैं बिसर सब जाए, तुम बेअंत सर्ब कल पूरा, किछ कीमत कही ना जाए, नानक सरन तुम्हारी हर जियो, भावे तिवे छड़ाए, राग बैराड़ी महला पंजवा, घर पहला एक ओंकार सतगुरु प्रसाद, संत जना मिल हर जस गायो, कोट जन्म के दुख गवायो, रहाओ जो चाहत सोई मन पायो, कर कृपा हर नाम दिवायो, सर्ब सुख हर नाम बढ़ाई, गुर प्रसाद नानक मत पाई, राग तलंग महला पहला, घर पहला एक ओंकार सतनाम, करता पुरख निर्भौ निर्वैर अकाल मूरत, जूनी सह भंग गुर प्रसाद, यक अर्ज गुफ्तम पेस, तो दर गोस कुन करतार, हक्का कबीर कमी है करीम, तो बे आब परवदगार, दुनिया मकामे फानी तहकीक, दिल दानी मम सरद मोए अज अजराइल, गिरफ्तै दिल हेच ना दानी, रहाओ जन पिसर पदर बिरादरा, कस नेस दस्तगीर, आखर बेफतम कस ना दारद चौंग, सदव का तकबीर, सब रोज गस्तम दर हवा, कर देम बदी ख्याल, गाहे ना नेकी कार करदम, मम ए चने है वाल, बदखत हम चो बखील, गाफिल बेन बेन जर बे बाक, नानक बिगोदया जन तुरा, तेरे चाकरा पा खाक, तलिंग महला पहला, घर दूजा एक ओंकार सतगुरु प्रसाद, पाओ तेरा भाग खलड़ी मेरा चीत, मैं देवाना पिया अतीत, कंकार कासा दर्शन की भूख, मैं दर मांगो नीता नीत, तो दर्शन की करो समाए, मैं दर मांगत भीख्या पाए, रहाओ केसर कुसम मृग में, रहना सर्ब शरीरी चढ़ना, चंदन भगता जो जोत इन्हें, सर्बे परमल करना, किया पट भांडा कहे ना कोए, ऐसा भगत वर्ण मैं होए, तेरे नाम निमे रहे लिव लाए, नानक तिन दर भीख्या पाए, तलिंग महला पहला, घर तीजा एक ओंकार सतगुरु प्रसाद, एहो मन एहो तन माया।

इन सखी सौ राविया तिन पूछोगी जाए पायल गो बेनती करो ले योगी पंथ बताए हुकम पछाणी नानका पौ चंदन लावे गुण कामन कामन करे तो प्यारा क्यों पावे जो दिल मिलिया सो मिल रिया मिलिया कहिए रह सोई जे बथेरा लोचिए बाती मेलन होई तात मिले पुन तात क्यों लिव लिव है क्यों तावे गुर प्रसादी जानिए तो अन पौ पावे पाना बाड़ी होए कर खरसार न जाने रसिया होवे मुस्का तब फूल पछाणे प्यो पीवे जो नानका परम परम समावे सहजे सहजे मिल रहे अमरा पद पावे तलंग महला चौथा हर किया कथा कहानियां गुरमीत सुनाइया बलिहारी गुर अपने गुर को बल जाइया आए मिल गुर सिख आए मिल तू मेरे गुरु के प्यारे रहाओ हर के गुण हर पाव दे से गुरु ते पाए जिन गुर का पाणा मनिया तिन कुम कुम जाए जिन सतगुर प्यारा देखिया तिन को हो बारी जिन गुर की गीती चाकरी तिन सत बलिहारी हर हर तेरा नाम है दुख मेटन हारा गुर सेवा ते पाइये गुरमुख निस्तारा जो हर नाम त्याई ते जन परवाना तिन बिट्टो नानक वारिया सदा सदा करवाना साहा तेरी उस्तत है जो प्रभ पावे सो जो गुरमुख प्यारा सेव दे तिन हर फल पावे जिना हर से ती पिरहड़ी तिन जी प्रभ नाले ओ जप जप प्यारा जीव दे हर नाम समाले जिन गुरमुख प्यारा सेविया तिन को कुम जाया ओ आप छुटे परवार स्यों सब जगत चढ़ाया गुर प्यारे हर सेविया गुर तन गुर तन्नो गुर हर मार्ग दस्या गुर पन बड़ पुन्नो जो गुरमुख गुर सेव दे से पुन प्राणी जन नानक तिन को बारिया सदा सदा करवाणी गुरमुख सखी सहेलियां से आप हर पाइया हर दरगे पहनाइया हर आप गल लाइया जो गुरमुख नाम त्याय दे तिन दर्शन दीजे हम तिन के चरण पखाल दे तूड कोल कोल पीजे पान सपारी खातियां मुख बीड़ियां लाइया हर हर कदे न चेत्यो जम पकड़ चलाइया जिन हर नामा हर चेतिया हृदय उतारे तिन जमने ना भी गुरसिख गुर प्यारे हर का नाम दान है कोई गुरमुख जाने नानक जिन सतगुर पेटिया रंग रलिया माने सतगुर दाता आखिया तुस करे पसाओ हो गुर विट्टो सत बारिया जिन दितड़ा नाओ सो तन गुरु सबास है हर देश नेहा हो वेक वे गुर बिकसिया गुर सतगुर देहा गुर रसना अमृत बोल दी हर नाम सहावी जिन सुन सिखा गुर मनिया तना पुख सब जावी हर का मार्ग आखिए को कित बिद जाइए हर हर तेरा नाम है हर खर्च ले जाइए जिन गुरमुख हर अराध्या से सावड़ दाने हो सतगुर को सदबारिया गुर बचन समाने तू ठाकर तू साहिबो तू है मेरा मीरा तुद पावे तेर बंदगी तू गुणी गहीरा आपे हर एक रंग है आपे मोरंगी जो तिस पावे नानका साई गल चंगी तलंग महला नौमा काफी एक ओंकार सतगुर प्रसाद चेतना है तो चेत लै निस दिन में प्राणी छिन छिन औद बिहात है फूटे कट ज्यो पानी रहाओ हर गुण काई न गावी मूर्ख ज्ञाना झूठे लाल चला के न मरण पछाना अजू कुछ बिगड़ियो नहीं जो प्रभ गुण गावे कौन नानक ते भजन ते निरपय पद पावे तलंग महला नौमा जाग लियो रे मन मना जाग लियो कह गाफल सोया जो तन उपजिया संग ही सो पी संग न होया रहा मात पिता सुत बंधिन हित जास्यो की ना ज्यो छूटियो जब दे ते डार अगन में दीना जीव तलियो बिहार है जगत को तुम जानो नानक हर गुण गाय ले सब सुपन समानो तलंग महला नौमा हर जसरे मना गाय ले जो संगी है तो तेरो अवसर बीतियो जात है कहो मान ले मेरो रहाओ संपत रतन राजस्यो अतने उलगायो काल फस जब गल परी सब पियो परायो जान बूझ के बाब रहते काज बगारियो पाप कर सकियो नहीं ने गर्भ निवारियो जय बुद्ध गुरु उपदेसिया सो सुनो रे पाई नानक कहत पकार
के गह प्रभ शरनाई तलंग बाणी भगतां की कबीर जी ओंकार सतगुर प्रसाद वेद कते विपतरा भाई दिल का फिकर न जाए टुक दम करारी जो करे हाजर हजूर खदाए बंदे खोज दिल हर रोज ना फिर परेशानी माए ए जो दुनिया सिर मेला दस्तगीरी नाए रहाओ द्रोग पड़ पड़ खुशी होए बेखबर बाद बकाए हक सच खालक खलक म्याने स्याम मूरत नाए असमान महाने लहंग दरिया गुसल कर दन बूद कर फकर दायम लाए चश्मे जय तहां मजूद अल्लाह पाकं पाक है सक रोग जे दूसर होए कबीर करम करीम का ओ करे जाने सोए नाम देव जी मैं अंदले की टेक तेरा नाम खुंदकारा मैं गरीब मैं मस्कीन तेरा नाम है अदारा राव करीमा रहीमा ला तू गनी हाजरा जूर दर पेस तू मनी दरिया तू दहिन तू बसियार तू तनी दे ले एक तू ही दिगर को नाई तू दाना तू बिना मैं विचार क्या करी नामे जे स्वामी बख्शन तू हरी हल्ले जा रा खुशखबरी बल बल जाऊं हो बल बल जाऊं नीकी तेरी बगारी आले तेरा नौरा कुजा आदम कुजा रफ्ती कुजा मैं रवि द्वारका नगरी रास बगोई खूब तेरी पगरी मीठे तेरे बोल द्वारका नगरी काहे के मगोल चंदी हजार आलम ए

सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत जूनी सह पंगुर प्रसाद राग सोई महला पहला चौप दे कर पहला पांडा तोय बैस्तूप देवो तो दूधे को जाओ दूध करम फुन सुरत समायन होय निराश जमाओ जपो तई को नामा अवरनरा पलका माराओ ए मन मीटी हाथ करो फुन नेत्रो नींद ना आवे रसना नाम जपो तब मथिये इन विद अमृत पावो मन संपर जित सत सर नावन पावन पाती तृप्त करे पूजा प्राण सेवक जे सेवे इन विद साहिब तृप्त रहे कहंदे कह कह कह जावा तुम सर अवर्ण कोई भगत ही नानक जन जापे हो सलाई सच्चा सोई सुई महला पहला कर दूजा इक ओंकार सतगुर प्रसाद अंतर वसे न बाहर जाए अमृत छोड़ काहे बिख काए ऐसा ज्ञान जपो मन मेरे हो वो चाकर साचे के दे रहाओ ज्ञान त्यान सब कोई रवे बांधन बाध्या सब जग पवे सेवा करे सो चाकर होए जल थल मिगल रवरिया सोए हमने चंगे बुरा न कोई प्रवत नानक तारे सोए सुई महला पहला कर शेमा इक ओंकार सतगुर प्रसाद उज्जल कहे चिलकना कोटम कालड़ी मस तोतियां जूठन उतरे जेसो तो वातिस सज्जन सही नाल मैं चलदिया नाल चलन जिथे लेखा मंगिए तिथे खड़े दसन रहाओ कोठे मंडप माड़िया पासो चित भी आहा जिया कम नावनी बिचो सखनी आहा बग्गा बग्गे कपड़े तीरत मज वसन कुटक जिया खावने बग्गे ना कहन सिमल रुख शरीर में मैजन देख पलन से पल कम न आवनी ते कुण मैं तनहन अंदले पार उठाया डुगर बाट बहुत अखी लोड़ी ना लहा हो चढ़ लंगा कित चाकरियां चंगियाईया अवर स्याणप कित नानक नाम समाल तू बद्दा चुट्टा जित सोई महला पहला जप तप का बंद बेलड़ा जित लंगे बहेला ना सरवर ना उछले ऐसा पंथ सहेला तेरो एको नाम जीठड़ा रत्ता मेरा चोला सदरंग टोला राव सज्जन चले प्यारिया क्यों मिला होई जे गुण होवे गठड़िया मिलेगा सोई मिलिया होवे न बिछड़े जे मिलिया होई आवा गौण नवारिया है सच्चा सोई होमे मार नवारिया सीता है चोला गुरबचनी फल पाया सहके अमृत बोला नानक कहे सहेलियो सो खरा प्यारा हमसे केरियां दासियां साचा हकम खसम हमारा सुई महला पहला जिनको पांडे पौतना सवार सी सुखी करे पसाओ दुख वसार सी सैसे मूले न सर पर तार सी तिना मिलिया गुराय जिनको लिखिया अमृत हर का नाव देवे दिखिया चले सतगुर पाए पवे न पिखिया जाको मैल हजूर दूजे निवे किस दरदरवाणी नए मूले पुछ दिस छूटे ताक बोल साहिब नदर जिस कले आने आप जिस नाही दूजा मते कोई टाए सारे साजाने सब सोए नाओ नानक बख्शीश नदरी करम होए सुई महला पहला पांडा अच्छा सोए जो तिस पाव सी पांडा आत्मलीन तोता अच्छा ना होए सी गुरुद्वारे होए सो जी पाई सी द्वारे तो अच्छा होए सी मैले अच्छे का विचार आप वरताए सी मत को जाने जागे पाए सी जेहे कर्म कमाए ते हा हो सी अमृत हर का नाव आप वरताए सी चलिया पत सो जन्म सवार बाजा वसाए सी मानस क्या बचारे तै लोक सुनाए सी नानक आप निहाल सब कुल तार सी सुई महला पहला जोगी होवे जोग बे पोगी होवे खाए तपिया होवे तप करे तीरथ मल मल नाए तेरा सदड़ा स्नीजे पाई जे को बहे अलाए रहाओ जैसा भी जे सोलने जो खट्टे सो खाए अगे पुछना होवी जै सुन निसाने जाए जैसो जैसा काढ़िए जैसी कार कमाए जो दम चितना भी सो दम व्यर्था जाए ए तन बेची बेकरी जे को लहे बकाए नानक कम ना भी जितन ना ही सच्चा नाओ सोई महला पहला कर सतमा इक ओंकार सतगुर प्रसाद जोग न खिंता जोग न डंडे जोग न पसम चढ़ाइए जोग न मुंडी मुंडी मूंड मडाइए जोग न सिंगी वाइए अंजन माए निरंजन रहिए जोग जुगते बपाइए
गली जोग न होई एक दृष्ट कर समसर जाने जोगी के ये सोई रहाओ जोग न बाहर मड़ी मसानी जोग न ताड़ी लाइये जोग न देश संतर पविये जोग न तीरथ नाइये अंजन माये न रंजन रहिये जोग जुगत इब पाइये सतगुर पेटे ता सहसा टूटे तावत वर्ज रहाइये निजर जरै सहज तुन लागे कर ही परचा पाइये अंजन माये न रंजन रहिये जोग जुगत इब पाइये नानक जीवतियां अमर रहिये ऐसा जोग कमाइये बाजे बाजो संगी बाजे तो निरपो पद पाइये अंजन माये निरंजन रहिये जोग जुगतियों पाइये सोई महला पहला कौन तराजी कवन तुला तेरा कवन सराह बलावा कौन गुरु कै पै देख्या लेवा कै पै मुल करावा मेरे लाल जियो तेरा अंत न जाना तू जल थल मैयल परपुर लीना तू आपे सर्व समाना रहो मन तराजी चितला तेरी सेव सरा सेव सराफ कमावा कट ही पीतर सो सो तोली इन विद चितर वावा आपे कंडा तोल तराजी आपे तोलन हारा आपे देखे आपे बूझे आपे है वणजारा अंधला नीच जात परदेसी खिनावे तिल जावे तांगी संगत नानक रहंदा क्यों कर मूड़ा पावे राग सुई महला चौथा कर पहला इक ओंकार सतगुर प्रसाद मन राम नाम राधिया गुर शब्द गुरु गुर कै सब इच्छा मन तन पूरिया सब चूका डर जम कै मेरे मन गुण गावा राम नाम हर कै गुरु तुठे मन प्रबोधिया हर पिया रस गटके रहाओ सतसंगत उत्तम सतगुर केरी गुण गावे हर प्रभ के कर कृपा तर मेलो सतसंग हम तो बो पग जन के राम नाम सब है राम नामा रस गुरमत रस रस के हर अमृत हर जल पाया सब लाथी तिस तिस कह हमरी जात पात गुर सतगुर हम बेचो सिर गुर के जन नानक नाम परियो गुर चेला गुर राखो लाजन के सुई महला चौथा हर हर नाम पजियो पर खोतम सब बिनसे दालत दलगा पौ जनम मरण पेटियो गुर शब्दी हर अस्थिर सेव सुख समगा मेरे मन पज राम नाम इत पिरगा मैं मंतन अर्प तरियो गुरागे सिर बेच लियो मुल मैं गा रहा नरपत राजे रंग रस माने बिन नामे पकड़ खड़े सब खलगा तरम राय सिर डंड लगाना फिर पुछता ने हथ फलगा हर राख राख जिन किरमत मारे शरणागत पुरख प्रित पलगा दर्शन संत दे सुख पावे प्रवलोच पूर जन तुमका तुम समर्थ पुरख बड़े प्रभ स्वामी मोको कीजे दान हर निमगा जन नानक नाम मिले सुख पावे हम नाम बिटो सदकुम का सोई महला चौथा हर नामा हर रंग है हर रंग मजीठे रंग गुर तुठे हर रंग चाड़िया फिर बौन हो वी पंग मेरे मन हर राम नाम कर रंग गुर तुठे हर भर उपदेसिया हर पेटियो राव निसंग राव मुंद यानी मन की फिर आवन जाना अंग हर प्रभ चित न आयो मन दूजा पाओ सहलंग हम मैल परे दो चारियां हर राखो अंगी अंग गुर अमृत सरन वालिया सब लाथे किल विकपंग हर दीना दीन दयाल प्रभ सत्संग मेलो संग मिल संगत हर रंग पाया जन नानक मंतन रंग सुई महला चौथा हर हर करे नित कपट कमावे हिरदा शुद्ध न होई आन दिन कर्म करे बथेरे सुपने सुख न होई ज्ञानी गुरबिन भगत न होई कोरे रंग कदे न चढ़े जय लूचे सब कोई रहाओ जप तप संजम वर्त करे पूजा मन मुख रोग न जाई अंतर रोग महामाना दूजे पाए खवाई बाहर पेक बहुत चितराई मनुआ दै दिसताव है होमी व्याप्या शब्द न चीने फिर जूनी आवे नानक नदर करे सो बूजे जो जन नाम त्याए गुर प्रसादी एको बूजे एक समाए समाए सुई महला चौथा कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद गुरमत नगरी खोज खुजाई हर हर नाम पदारत पाई मेरे मन हर हर हर शांत बसाई तिसना अगन बुझी खिन अंतर गुर मिलिये सब पुख गवाई रहा हर गुण गावा जीवा मेरी माई सत गुर दयाल गुण नाम दड़ाई हो हर हर प्र प्यारा टूंट डराई सत संगत मिल हर सपाई
ਧੁਰ ਮਸਤਕ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਹਰ ਪਾਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੁੱਠਾ ਮਿਲੇ ਹਰ ਪਾਈ ਸੂਈ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਮਨ ਹਰ ਲਾਈ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਏ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਏ ਹਰ ਰੰਗ ਰਾਤਾ ਮਨ ਰੰਗ ਮਾਣੇ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਣੇ ਰਹਾਉ ਹਰ ਰੰਗ ਕੋ ਲੋਚੇ ਸਭ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਰੰਗ ਚਲੂਲਾ ਹੋਈ ਮਨ ਮੁਖ ਮੁਖ ਨਰ ਕੋ ਰਾਹ ਹੋਏ ਜੇ ਸੋ ਲੋਚੇ ਰੰਗ ਨ ਹੋਵੇ ਕੋਏ ਨਦਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਵੇ ਨਾਨਕ ਹਰ ਰਸ ਹਰ ਰੰਗ ਸਮਾਵੇ ਸੂਈ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਜੇਵਾ ਹਰ ਰਸ ਰਹੀ ਅਗਾਏ ਗੁਰਮੁਖ ਪੀਵੇ ਸਹਿਜ ਮਾਏ ਹਰ ਰਸ ਚੰਚਾਖੋ ਜੇ ਪਾਈ ਤੌਕਤ ਅੰਤ ਸਾਧ ਲਵਾਈ ਰਹਾਉ ਗੁਰਮਤ ਰਸ ਰਾਖੋ ਰਤਾਰ ਹਰ ਰਸ ਰਾਤੇ ਰੰਗ ਮਰਾਰ ਮਨਮੁਖ ਹਰ ਰਸ ਚਾਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਹੋਮੇ ਕਰੇ ਬਹੁਤੀ ਮਿਲੇ ਸਜਾਏ ਨਦਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਹਰ ਰਸ ਪਾਵੇ ਨਾਨਕ ਹਰ ਰਸ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਸੋਈ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਕਰ ਛੇਵਾਂ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੀਚ ਚਾਥਰ ਜਪਦਿਆਂ ਉੱਤਮ ਪਦਵੀ ਪਾਏ ਪੁੱਛੋ ਬਿਦਰਦਾਸੀ ਸੁੱਤੇ ਕਿਸਨ ਉਤਰਿਆ ਕਰ ਜਿਸ ਜਾਏ ਹਰ ਕੀ ਕਥ ਕਥੋ ਸੁਣੋ ਜਨ ਪਾਈ ਜਿਤ ਸਹਿਸਾ ਦੁਖ ਭੁਖ ਸਭ ਲੈ ਜਾਏ ਰਹਾਉ ਰਵਿਦਾਸ ਚਮਾਰ ਉਸਤਤ ਕਰੇ ਹਰ ਕੀਰਤ ਨਿਮਕ ਇੱਕ ਗਾਏ ਪਤਿਤ ਜਾਤ ਉੱਤਮ ਪਿਆ ਚਾਰ ਵਰਨ ਪਏ ਪਗ ਆਏ ਨਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰੀਤ ਲੱਗੀ ਹਰ ਸੇਤੀ ਲੋਕ ਸ਼ੀਪਾ ਕਹੇ ਬੁਲਾਏ ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪਿਠ ਦੇ ਛੋੜੇ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿਓ ਲੀਆ ਮੁਖ ਲਾਏ ਜਿਤਨੇ ਭਗਤ ਹਰ ਸੇਵਕਾਂ ਮੁਖ ਅੜਸੜ ਤੀਰਕ ਤਿਨ ਤਿਲਕ ਕਢਾਏ ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੋ ਅਨ ਦਿਨ ਪਰਸੇ ਜੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਹਰ ਰਾਏ ਸੂਈ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਤਨਾਂਤਰ ਹਰ ਅਰਾਧਿਆ ਜਿਨ ਕੋ ਤੁਰ ਲਿਖਿਆ ਲਿਖਤ ਲਿਲਾਰਾ ਤਿਨ ਕੀ ਵਖੀਲੀ ਕੋਈ ਕਿਆ ਕਰੇ ਜਿਨ ਕਾਂ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਹਰ ਕਰਤਾਰਾ ਹਰ ਹਰ ਧਿਆਏ ਮਨ ਮੇਰੇ ਮਨ ਧਿਆਏ ਹਰ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਹਾਰਾ ਰਹਾਉ ਤੁਰ ਪਕਤ ਜਨਾ ਕੋ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰਾ ਮੂਰਖ ਹੋਵੇ ਸੋਨ ਕੀ ਰੀਸ ਕਰੇ ਤਿਸ ਹਲਤ ਪਲਤ ਮੋਕਾਰਾ ਸੇ ਭਗਤ ਸੇਵਕਾਂ ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ ਤਿਨ ਕੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਹਰ ਪਾਈਏ

तुर लिख पाया। पंच तत कर तुद सिस्ट सब साजी कोई शिया, करियो जय कुछ कीता होवे। इक ना सतगुर मेल बिहाजे, इक मन मुख करे सिरोवे। हर की वडियाई हूँ आख न सका, हो मूर्ख मुग्ध निचान। जन नानको हर बख्श लै मेरे स्वामी, शरणागत पिया अजान। राग सोई महला पंजमा कर पहला, इक ओंकार सतगुर प्रसाद। बाजी गर जैसे बाजी पाई, नाना रूप एक दिखलाई। सांग उतार थमियो पर सारा, तब एको एक अंकारा। कवन रूप दृष्ट बिन सायो, कत गयो ओ कत ते आयो। रहाओ जलते उठे अनिक तरंगा, कनिक पूकन की ने बौरंगा। बीच बीच देखो बौ प्रकारा, फल पाए ते एक ओंकारा। सैस कटा में एक कास, कट फूटे ते ओई पर गास। परम लोभ मो माया विकार, परम छूटे ते ओंकार। ओ बनासी बिन सतनाही, ना को आवे ना को जाई। गुर पूरे हो में मलतोई, कौ नानक मेरी परम गत होई। सुई महला पंजमा कीता लोड़े, सो प्रभ होए। तुझ बिन दूजा नाही कोए, जो जन सेवे तिस पूरन काज। अदास अपने की राखो लाज, तेरी शरण पूरन दयाला। तुझ बिन कवन करे प्रतपाला। रहो जल थल में यल दया, पर पूर निकट वसे नाही प्रभ दूर। लोक पत्यारे कछु न पाइये, साच लगे ता हो में जाइए। जिसनु लाए लै सो लागे, ज्ञान रतन अंतर तिस जागे। दुर्मत जाए परम पद पाए, गुर प्रसादी नाम त्याए। दो कर जोड़ करो अरदास, तुद पावे ता आने रास। कर कृपा अपनी भक्ति लाए, जन नानक प्रभ सदा त्याए। सोई महला पंजमा, तन सहागन जो प्रभ पछाने। नामे हुकम तजे अब माने, प्रियो सो राती रलिया माने। सुन सकिए प्रभ मिल निसानी, मंतन अरब तज लाज लुकानी। रहाओ सखी सहेली को समझावे, सोई कमावे जो प्रभ पावे। ता सहागन अंक समावे, गर्भ गहेली मैल न पावे। फिर पछतावे जब रैण बिहावे, कर्महीन मन मुख दुख पावे। बिनो करी जे जाना दूर, परवना सीरिया परबूर। जन नानक गावे देख दूर, सुई महला पंजमा। ग्रह वस गुर कीनो हर कर की नार, दस दासी कर दीनी पतार। सगल समग्री में कर की जोड़ी, आस प्यासी फिर को लोड़ी। कवन कहाँ गुण कंत प्यारे, सुगढ़ स्वरूप दयाल मरारे। रहो सत श्रृंगार पौ पंजन पाया, अमृत नाथ बोल मुख काया। कंगन वस्त्र गहने बने सहावे, तन सब सुख पावे जा फिर करावे। गुण कावन कर कंतर जाया, बस कर लीना गुर परम चकाया। सब ते ऊंचा मंदर मेरा, सब कामन त्यागी प्रयो प्रीत मेरा। प्रगटिया सूर ज्योत जियारा, सेज बिछाई सरद पारा। नाव रंग लाल सेजरा बनाया, जन नानक फिर तन मिल सुख पाया। सुई महला पंजमा, क्यो ह्यो मिलन प्रवताई। खोजत रचियो दिख्यो प्रजाई, सुन देशो प्रगृह सेज बिछाई। परम परम आयो तो नदर न पाई, किन विद हीरो तीरे निमानो। मिल साजन हो तुझ कर बानो, रहो एक सेज बछी तन कंता। तन सूती फिर सद जगंता, पियो मदरो तन मत तन मत वंता। तन जागे जय फिर बलंता, पई नरासी बौदिन लागे। देश संतर में सगले जागे, किन रह न पावो बिन पग पागे। होयो कृपाल प्रभ मिलो सपागे, पियो कृपाल सत्संग मलाया। बूजी तप्त कर कर ही पिर पाया, सगल श्रृंगार हुने मुझे सुहाया। कौ नाने गुर परम चकाया, जय देखा तै पिर है पाई। खोलियो कपाड़ता मन ठहराई, रहाओ दूजा सुई महला पंजमा। क्या गुण तेरे सार संभाली, मैं निर्गुण के दतारे। वै खरीद क्या करे विचित्राई, यो जियो पिंड सब थारे। लाल रंगीले प्रीतम मनमो, तेरे दर्शन को हम बारे। रहो प्रभदाता मोदीन पखारी, तुम सदा सदा पकारे। जो कुछ नाही जय मैं ते होवे, मेरे ठाकर अगम पार अपारे। क्या सेव कमावो क्या रजावो, बिद कित पावो दरसारे। मित नहीं पाइये अंत न लहिये, मंत्र से चरनारे। पावो दान डीठ होए मांगो, मुख लागे संत रह नारे। जन नानको गुर कृपा तारी, प्रभ हाथ दे निस्तारे। सोई महला पंजमा कर तीजा,
एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सेवा थोरी मागन बहुता, मैल न पावे कह तो पौता, जो प्रमाने तिस तिन की रीसा, कूड़े मार की हठीसा, रहाओ पेक दिखावे, सच न कमावे कह तो मैली निकट नावे। अतीत सदाए माया का माता, मनी प्रीत कहे मुखराता, कौ नानक प्रभु बिनो सुनीजे, कुचल कठोर कामी मुक्त कीजे। दर्शन देखेगी वडियाई, तुम सुखदाते पुरख सवाई, रहाओ दूजा सुई महला पंजवा, बुरे काम को उठ खलाया, नाम की बेला पै पै सोया, अवसर अपना बुझे न्याना, याना माया मोरंग लपटाना, रहाओ लोभ रह को बिक्स फूल बैठा, साजना का दर्शन डीठा, कबू न समझे ज्ञान गवारा, बहर बहर लपटियो जंजारा, रहो बिखे नाद करन सुन पीना, हर जस सुन तालस मन कीना, दिशना ही रह पेख तंदे, छोड़ जाए झूठे सब तंदे, रहो कौ नानक प्रभ बख्श करीजे, कर कृपा मो साध संग दीजे। तो कुछ पाइये जो होइये रहना, जिसे बजाए तिस नाम लेना, रहाओ सुई महला पंजमा। कर में ठाकर नदर ना आवे, गल में पहुन ले लटकावे, बर में भूला साकत फिरता, नीर बरोले खप खप मरता, रहो जिस पहुन को ठाकर कहता हो, पहुन ले उसको डूबता, गुनाहगार लून हरामी, पावन नाम पार ग्रामी, गुरमिल नानक ठाकर जाता, जल थल मियल पूरन विदाता। सोई महला पंजमा, लाल रावनिया कवन गतीरी, सखी बतावो मुझे मतीरी, सूब सूब सूबी अपने प्रीतम के रंग रति, रहा पाप मलोबो संग नैन पतीरी, जहाँ पटाओ जो ततीरी, जप तप संजम दियो जतीरी, इक निम कमलावो मो प्राण पतीरी, मान तान अंग भती हंग बुद्ध हतीरी, सा नानक सुहाग बतीरी। सुई महला पंजमा, तू जीवन तू प्राण दारा, तुझ ही पेख वेक मन सदारा, तू साजन तू प्रीतम मेरा, चिति न बसारे काहू बेरा, रहो बै खरीद हो दासो तेरा, तू पारो ठाकर गुणी गहेरा, कोट दास जाके दरबारे, निमक निमक बसे तिन नाले, हो कुछ नाही सब कुछ तेरा, ओत पोत नानक संग बसेरा। सुई महला पंजमा, सुख मिल जाके ऊच दुआरे, तै मैं वसे भगत प्यारे, सहज कथा प्रभ की अत मीठी, विरले काहू नेत्रो डीठी, रहो तै गीत अनाद कारे संगा, उमा संत करे हर रंगा, तै मरन जीवन सोगन हर का, साच नाम की अमृत वरखा, गुहज कथा ए गुरते जानी, नानक बोले हर हर बाणी। सुई महला पंजमा, जाके दर्श पाप कोट उतारे, पेट संगे पव जल तारे, ओ साजनो मीत प्यारे, जो हमको हर नाम चतारे, रहाओ जाका शब्द सुन सुख सारे, जाकी टहल जमदूत बिदारे, जाकी तीर के मने सदारे, जाके सिमरन मुख जलारे, प्रभ के सेवक प्रभ आपस वारे, शरण नानक तिन सद बले हारे। सुई महला पंजमा, रह न पावे सुर नर देवा, उठ सतारे कर मुन जन सेवा, जीवत पेखे जिनी हर हर त्याया, सात संगतिनी दर्शन पाया, रहाओ बादशाह साब पारी मन्ना, जो दी से सो खले करना, कूड़े मोहे लपट लपटाना, छोड़ चलिया ता फिर पछताना, कृपा नदान नानक को करो दात, नाम देरा जपी दिन रात। सोई महला पंजमा, कट कट अंतर तुम्हें तुम्हें बसारे, सगल समग्री सूत तुम्हारे, तू प्रीतम तू प्राण तारे, तुम ही पेक पेक मन विगसारे, रहाओ अनिक जोन परम परम परम हारे, उठ गई अब साध संगारे, अगम गोचर अलख पारे, नानक सिमरे दिन रह नारे। सुई महला पंजमा, कवन काज माया बडियाई, जाको बिंस भारत न काई, यो सुपना सो बत नहीं जानी, अचेत बिस्ता मैं लपटाने, रहाओ महामो मोयोग बारा, पेखत पेखत ऊट सदारा, ऊंचते ऊंचता का दरबारा, कई जंत बिने हो पारा, दूसर हुआ ना को हई, जप नानक प्रवे को सोई। सुई महला पंजमा, सिमर सिमरता हो को जीवा, चरण कमल तेरे तोय तो पीवा, सो हर मेरा अंतर जामी, भक्त जना के संग स्वामी, रहाओ सुन सुन अमृत नाम त्यावा, आठ पैर तेरे गुण गामा, पेक पेक लीला मन अनंदा, गुण पार प्रभ परमानंदा, जाके सिमरन कुछ पौ न व्यापे,
ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਜਾਪੇ ਸੋਈ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਗੁਰ ਕੇ ਬਚਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਧਾਰੀ ਰਸਨਾ ਨਾਮ ਰਸਨਾ ਜਾਪ ਜਪੋ ਬਨਵਾਰੀ ਸਫਲ ਮੂਰਤ ਦਰਸ਼ਨ ਬਲਿਹਾਰੀ ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਨ ਪ੍ਰਾਣ ਅਧਾਰੀ ਰਹਾਓ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਨ ਮਰਨ ਵਾਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਥਾ ਸੁਣ ਕਰਨ ਅਧਾਰੀ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਹ ਮੋਹ ਚਾਰੀ ਦ੍ਰਿ ਨਾਮ ਦਾਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸੁਚਾਰੀ ਕੋ ਨਾਨਕੇ ਤਤ ਵਿਚਾਰੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪਾ ਰਵਤਾਰੀ ਸੂਈ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਲੋਹ ਮੋਹ ਮਗਨ ਅਪਰਾਧੀ ਕਰਨ ਹਾਰ ਕੀ ਸੇਵ ਨ ਸਾਧੀ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ ਤੁਮਾਰੇ ਰਾਖ ਲਿਓ ਮੋਹ ਨਿਰਗੁਣਿਆਰੇ ਰਹਾਉ ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਪ੍ਰਭ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਕਾਚੀ ਦੇ ਮਾਨਕ ਬਵਾਨੀ ਸਵਾਦ ਬਾਤ ਈਰਕ ਮਦ ਬਾਇਆ ਇਨ ਸੰਗ ਲਾਗ ਰਤਨ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਦੁਖ ਪੰਜਨ ਜਗ ਜੀਵਨ ਹਰ ਰਾਇਆ ਸਗਲ ਤਿਆਗ ਨਾਨਕ ਸ਼ਰਨਾਇਆ ਸੁਈ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਪੇਖਤ ਚਾਕਤ ਹੈ ਕਹੀਏ ਅੰਧਾ ਸੁਨੀਅਤ ਸੁਣੀਏ ਨਾਹੀ ਨਿਕਟ ਵਸ ਕੋ ਜਾਣੇ ਦੂਰ ਪਾਪੀ ਪਾਪ ਕਮਾਹੀ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰ ਜਿਤ ਛੁਟੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਰਾਵ ਕੋਰ ਮਹਿਲ ਸਦਾ ਰੰਗ ਰਾਤਾ ਸੰਗਤ ਮਾਰੇ ਕੁਛ ਨਾ ਜਾਤਾ ਰਖੇ ਪੁਚਾਰ ਮਾਟੀ ਕਾ ਪਾਂਡਾ ਅਤਕ ਚੀਲ ਮਿਲੇ ਜਮ ਡਾਂਡਾ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋ ਮੋਹ ਬਾਧਾ ਮਹਾਂਗਰਤ ਮੈਂ ਨੇ ਘਰਤ ਜਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਨੀਜੇ ਡੂਬਤ ਪਾਨ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਲੀਜੇ ਸੋਈ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਜੀਵਤ ਮਰੇ ਬੁਝੇ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ ਤਿਸ ਜਨ ਕਰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸੁਣ ਸਾਜਨ ਇਉਂ ਦੁੱਤਰ ਤਰੀਏ ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਉਚਰੀਏ ਰਹਾਉ ਏਕਾ ਬਿੰਦੂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਕਟ ਕਟ ਅੰਤਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਛਾਣੇ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰੇ ਸੋਈ ਪਲਮਾਨੇ ਆਦ ਅੰਤ ਕੀ ਕੀਮਤ ਜਾਣੇ ਕੋ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਜਨ ਬਲਿਹਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਸੇ ਮਰਾਰੀ ਸੋਈ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰਨੀ ਹਾਰ ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੋ ਦੇ ਆਧਾਰ ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਨ ਤਿਆਏ ਦੁਖ ਦਰਦ ਸਤਨ ਤੇ ਜਾਏ ਰਹਾਉ ਪਵਜਲ ਡੂਬਤ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾਢੇ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕਾ ਟੂਟਾ ਗਾਂਢੇ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੂਕ ਸਹਿਜ ਮਨ ਆਵੇ ਸ਼ਾਂਤ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਰਹਿਣ ਬਡਭਾਗੀ ਪਾਵੇ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਕੋ ਸਦਬਲ ਜਾਵੇ ਸੂਈ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਹੁਰ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਬਲ ਜਾਈਏ ਆਠ ਪੈਰ ਹਰ ਹਰ ਜਸ ਗਾਈਏ ਸਿਮਰੋ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਸਵਾਮੀ ਸਗਲ ਕਟਾ ਕਾ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਰਹਾਉ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿਉ ਲਾਗੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸਾਚੀ ਪੂਰਨ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤ ਸੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਸੇ ਮਨ ਮਾਈ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲ ਵਿਖ ਜਾਹੀ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ ਦਿਆਲਾ ਨਾਨਕ ਮੰਗੇ ਸੰਤਰ ਵਾਲਾ ਸੋਈ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵਾ ਗੁਰ ਤੇਰਾ ਪੂਰਨ ਕਰਮ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ ਏ ਬਨੰਤੀ ਸੁਣ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਦਿਓ ਨਾਮ ਕਰ ਆਪਣੇ ਚੇਰੇ ਰਹਾਓ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭ ਦਾਤੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਨੇ ਵਿਰਲੇ ਜਾਤੇ ਸੁਣੋ ਬਿਨੋ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ ਚਰਨ ਕਮਲ ਵਸੇ ਮੇਰੇ ਚੀਤਾ ਨਾਨਕ ਏ ਕਰੇ ਅਰਦਾਸ ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਪੂਰਨ ਗੁਣਦਾਸ ਸੁਈ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਮੀਤ ਸਾਜਨ ਸੁਧਬੰਧ ਪਾਈ ਜਤ ਕਤ ਪੀਖੋ ਹਰ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਜਤ ਮੇਰੀ ਪਤ ਤੇਰੀ ਤਨ ਹਰ ਨਾਮ ਸੂਕ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਬਿਸਰਾਮ ਰਹਾਉ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜਪ ਸਨਾ ਸਨਾ ਕੋਟ ਆਵਤ ਤਿਸ ਬੇਦ ਨਾਇ ਹਰ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਗੜ ਕੋਟ ਹਮਾਰੇ ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਜਮ ਤਿਸ ਨਾ ਵਧਾਰੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਦਾ ਬਲਿਹਾਰੀ ਸੇਵਕ ਸੰਤ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੁਰਾਰੀ ਸੁਈ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਗੁਣ ਗੋਪਾਲ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਨਿਤ ਗਾਹਾ ਆਨੰਦ ਬਨੋਦ ਮੰਗਲ ਸੁਖਤਾਹਾ

मंतन प्राण जियो अरपाहा हर सिमर सिमर मान मोकटाहा दीन दयाल करो उत्साहा नानक दास हर शरण समाहा सुई महला पंजमा बैकुंठ नगर जहां संत बासा प्रभु चरण कमल दमाए नवासा सुन मन तन तुझ सुख दिखलावो हर अनिक बिंजन तुझ पोक पंचावो रहाओ अमृत ना पुंच मन माही अचर्ज साध ता के वरने ना जाई लोभ मोह तृष्णा बजता की पार ब्रह्म की शरण जनता की जन्म जन कै पै मोन वारे नानक दास प्रभु कृपा तारे सोई महला पंजमा अनेक बिंग दास के पर हरिया कर कृपा प्रभु अपना करिया तुम्हें छाए लियो जन अपना उर्ज परियो जाल जग सुपना रहो पर्वत दोख महा बिकराला खिन में दूर किए दियाला सोक रोग विपतत पारी दूर पई जपना मरारी दृष्ट तारली नो लड़लाए हर चरण गए नानक शरणाए सुई महला पंजमा दीन छाए दुनी जो लाए दुई सराई खोना मी कहाए ज्योतिष पावी सो परवान अपनी कुदरत आपे जान रहो सच्चा धर्म पुन पला कराए दीन के तो से दुनी ना आए दुनी ना जाए सर्व निरंतर एको जागे जित जित लाया तित तित को लागे अगम गोचर ससाहे मेरा नानक बोले बुलाया तेरा सोई महला पंजमा प्रथा काल हर नाम उचारी ईत ऊत की ओट सवारी सदा सदा जपिए हर नाम पूरन होवे मन के काम राव प्रभव नासी रिन दिन गाओ जीवत मर्त न चल पावे थाओ सो सौ सेव सेव जित टोट नावे खात खर्च सुख अंध बिहावे जग जीवन पुरख साध संग पाया गुर

0: आदर्श तुम्हारा, चरण कमल चाहिए बलिहारा, तुझ बिन ठाकर कवन हमारा राव, साध संग से प्रीत बनाई, पूर्व कर्म लिख तुर पाई, जप हर हर नाम अचरज प्रताप, जाल न साके तीने ताप, निमुख न विसरे हर चरण तुम्हारे, नानक मांगे दान प्यारे, सोई महला पंजवा से संजो करो मेरे प्यारे, जित रसना हर नाम उचारे, सुन बेनती प्रभ दीन दयाला, साध गावे गुण सदा रसाला, रहो जीवन रू सिमरन प्रभ तेरा, जिस कृपा करे बसे तिसनेरा, जन की पूक तेरा नाम आहार, तू दाता प्रभ देवन हार, राम रमत संतन सुखमाना, नानक देवन हार सुजाना, सुई महला पंजवा, बैती जात कदे दिशना तारत, मिथ्या मोह बंधे नित पारच, माधवे पज दिन नित रैणी, जन पदारत जीत हर शनी, रहो करत विकार दो कर चारत, राम रतन रिद तिल नहीं तारत, परन पोखन संग औद बिहानी, जय जगदीश की गत नहीं जानी, सर शरण समरत अगोचर स्वामी, उदर नानक प्रभ अंतर जामी, सुई महला पंजवा, साध संगत तरे पैसागर, हर हर नाम सिमर रतनागर, सिमर सिमर जीवा नारायण, दुख रोग सोग सब विनसे, गुरपूले गुरपूरे मिल पाप तजाइन रहाओ, जीवन पदवी हर कानाओ, मन तन निर्मल साच सवाओ, आठ पैर पार ब्रह्म त्याइए, पूरब लिखत होए ता पाइए, शरण पै जप दीन दयाला, नानक जांचे संतर वाला, सोई महला पंजवा, कर का काज न जानी रूढ़ा, झूठे तंधे रचियो मूढ़ा, जितू लावे तित लगना, जातू दे तेरा नाउ जपना, रहाओ हर के दास हर से तीरा, राम रसायन दिन माते, बाह पकड़ प्रभा पे काडे, जन्म जन्म के टूटे कांडे, उदर स्वामी प्रभ कृपा तारे, नानक दास हर शरण द्वारे, सुई महला पंजवा, संत प्रसाद ने चल कर पाया, सर्व सुख फिर नहीं दुलाया, गुरु त्याय हर चरण मन चीने, ताते करते अस्तर कीने, रहाओ गुण गावत चतव नासी, ताते काटी जम की फांसी, कर कृपा लीने लड़लाए, सदानंद नानक गुण गाए, सुई महला पंजवा, अमृत वचन साध की बाणी, जो जो जपै तिसकी गत होवे, हर हर नाम नित रसन बखानी, रहाओ कली काल के मिटे क्लेसा, एको नाम मन में परवेसा, साधु तूर मुख मस्तक लाई, नानक उदरे हर गुर शनाई, सुई महला पंजवा, कर तीजा गोविंदा गुण गाओ दयाला, दर्शन दियो पूरन कृपाला, रहाओ कर कृपा तुम ही प्रतपाला, ज्यो पिंड तुम सब तुमरा माला, अमृत नाम चले जप नाला, नानक जांचे संतर वाला, सुई महला पंजवा, सुई महला पंजवा, तिस बिन दूजा अवर न कोई, आपे थमे सच्चा सोई, हर हर नाम तेरा मेरा आधार, करन कारण समरथ पार, रहाओ सब रोग मटावे न मन रोआ, नानक रखा आपे हुआ, सुई महला पंजवा, दर्शन को लोचे सब कोई, पूरे पाक प्राप्त होई, रहाओ श्याम सुंदर तजनी क्यों आई, महामोनी दूता लाई, प्रेम बिशोहा करत कसाई, निर्दे जन तिस दया न पाई, अनेक जन्म बीतीन परमाई, कर वास न देवे दुत्तर माई, दिन रहन अपना किया पाई, किस दोष न दीजे किरत पवाई, सुन साजन संत जन पाई, चरण शरण नान गत पाई, सुई राग सुई महला पंजवा, कर चौथा इक ओंकार, सतगुर प्रसाद पली सुहावी शापरी, जा मैं गुण गाए, किति काम तौल तर जित हर विसराय, रहाओ अंध गरीबी सात संग जित प्रभ चित लाए, जल जाओ ए बटपना माया लपटाए, पीसन पीस ओट कामरी, सुख मन सो तो खाए, ऐसो राज कितना ऐसो राज न किते काजित, ने तृपताए नगन नगन फिरत रंग एक है, ओ शोभा पाए, पाठ पटंबर विरथिया जैर आचलो बाए, सब कुछ तुमरे हाथ प्रभ आप करे कराए, सास सास सिमरत रहा नानक दान पाए, सुई महला पंजवा, हर का संत प्राण तन तिसका पनिहारा, पाई मित सत सुत सगल ते जीत हूँ ते प्यारा, रहा केसा कर बीजना, संत चौर चलावो शीस निहारो, चरण तल तूर मुख लावो, मिष्ट बचन बेनती करो, दीन की न्यायी तज अवमान शर नी परो हर गुण निद पाई अवलोकन पुनः पुनः करो जन का दरसार अमृत वचन मन में सिंचियो भंदो बार बार चितवो मन आशा करो जन का संग मांगो नानक प्रभ दया करो दास चर नी लागो सुई महला पंजवा जिन मोहे ब्रह्मंड खंड ताहू मैं पाओ राख लियो बिखी जो देव अपना नारा जाते नाही को सुखी ताके पाछे जाओ छोड़ जाए जो सगल को फिर लपटाओ करो कृपा को ना पते तेरे हर गुण गाओ नानक की प्रबेंती साध संग समाओ राग सुई महला पंजवा कर पंजवा पड़ताल ओंकार सत गुर प्रसाद प्रीत प्रीत गुड़िया मोह लालना जप मन गोविंद एक है अवर ना ही को लिखे संत लाग मने छोड़ दुबदा की कुरिया रहाओ निर्गुण हरिया सरगुण तरिया अनेकोठिया पिन पिन पिन करिया बिच मन कोट बरिया निज मंदर पिरिया तहां आनंद करिया ने मरिया ने जरिया कीर्तन जुरिया बौबिद फिरिया पर को हिरिया बिखना करिया अब साधु संग परिया हर द्वारे करिया दर्शन करिया नानक गुर मिरिया बौन प्रिया सुई महला पंजवा रास मंडल की नोखारा सगलो साज रखियो पसारा रहो बौबिद रूप रंग पारा पेखे खुशी पोग नहीं हारा सवरस लैत बस्त निरारा बरन चहना ही मुख ना मसारा कह न जाई खेल तुहारा नानक रैन संत चरनारा सुई महला पंजवा तो मैं आयो शरणी आयो प्रोसे आयो कृपा आया जो पावे तो राखो स्वामी मार गुरे पठाया राव महादुत्तर माया जैसे पवन चलाया सुन सुन ही डराया करो तरम राया ग्रह अंध को पाया पावक सगराया गई ओर सदाया नान खरताया अब मैं पूरा पाया राग सोई महला पंजमा कर शीमा इक ओंकार सतगुर प्रसाद सतगुर पास भ्रंतिया मिले ना मदारा तुठा सच्चा पातशाह ताप गया संसारा पक्ता की टेक तू संता की ओर तू सच्चा सिरजनहारा रहाओ सच तेरी समगरी सच तेरा दरवारा सच तेरे खजिनिया सच तेरा पसारा तेरा रूप अगम है नूप तेरा दरसारा हो करबानी तेरिया सेवका जिन हर नाम प्यारा सब इच्छा सबे इच्छा पूरिया चा पाया अगम पारा गुरु नानक मिलिया पारवम तेरिया चरना को बलिहारा राग सोई महला पंजवा कर सतमा इक ओंकार सतगुर प्रसाद तेरा पाणा तुहे मनाए जिसनु होए दयाला साई पक ज्योत पावे तू सर्व जिया प्रत पाला मेरे राम राय संता टेक तुम्हारी जो तुत पावे सो परवान मंतन तुहे अधारी रहाओ तू दयाल कृपाल कृपा दित कृपा निद मनसा पूरन हारा पग तेरे सब प्राण प्रतपी तुम तू पगतन का प्यारा तू अथा अपारत ऊंचा कोई अवरण तेरी पाते अरदास हमारी स्वामी विसर नाही सुख दाते दिन रैन सास सास गुण गामा जे स्वामी तुद पावा नाम तेरा सुख नानक मांगे साहेब तुठे पावा सोई महला पंजवा विसर नाही जित तू कबहू सो थान तेरा केहा आठ पैर जित तुद्याई निर्मल हो वे देहा मेरे राम हो सो थान पालन आया खोजत खोजत प्यासा संग तिन शरनाई पाया राव वेद पढ़े पढ़ ब्रह्मे हारे एक दिल ने कीमत पाई साधक सिद्ध फिरे बिललाते ते भी मोहे माई दस अवतार राजे होए वरते महादेव अदूता तिन भी अंत न पाया तेरा लाए थके विपूता सहज सुख आनंद नाम रसहर संति मंगल गाया सफल दर्शन पेटियो गुरु नानक ताम मन तन हर हर त्याया सुई महला पंजमा करम तरम खंड जो दिसे तिन जम जगाती लूटे निर्वाण कीर्तन गावो करते का निमक सिमरत जित छूटे संतो सागर पर उतरिए जी को बचन कमावे संतन का सोप गुर प्रसादी तरिए रहाओ कोर तीरथ मजनिश नाना इस कल में मैल परिजे साध संग जो हर गुण गावे सो निर्मल कर लीजे वेद कतेव सिमरत सब साफत इन पढ़िया मुक्तन होई एक अखर जो गुरमुख जापे तिसकी निर्मल सोई खत्री ब्राह्मण सूद बैस उपदेश चौबरना को साजा गुरमुख नाम जपे उदरे सो कल में कट कट नानक माजा सोई महला पंजमा
1: जो किस करे सोई प्रभु माने उहे राम नाम रंग राते तिनकी शोभा सबनी थाहे जिन प्रभु के चरण पराते मेरे राम हर संता जे बडना कोई भगता बण आई भगता बण आई प्रभु अपने सो जल थल में यल सोए रहाओ कोट अपराधी सत संग उदरे जम ता के नेड़ न आवे जन्म जन्म का बिछड़िया होवे तिन हर सिउ आण मलावे माया मोह परम पो काटे संत सरन जो आवे जेहा मनोरथ कह अराधे सो संतन ते पावे जन की महिमा कीतक वर्णो जो प्रभु अपने पाणे को नानक जिन सतगुर पिटिया से सब ते पै नकाण।

तो संजोग शासन तो कर पाओ कुर्म कर्माई आया बलराम जियो संत जिना कर मेल गुरबाणी गावाई आ बलराम जियो बाणी गुर गाई परम गत पाई पंच मिले सो

सर्वरया पर पूरे अंतर बार हर प्रभ एको मिल गए मिल हर जन मंगल गाए जा नानक दूजी लाम चलाई अनहद शब्द बजाए हर तीजड़ी लामन चाओ पया बैरागी आ बलराम जियो संत जना हर मेल हर पाया बटभागिया बलराम जियो निर्मल हर पाया हर गुण गाया मुख बोली हर माणी संत जना बटभागी पाया हर कथिए अकथ कहानी हृदय हर हर हर तुन उपजी हर जपिए मस्तक भाग जियो जा नानक बोले ती।

गुरमुख लिया सुपाए, हर मन तन मीठा लाया बलराम दियो। हर मीठा लाया मेरे प्रपाया, अंदिन हल बलाई मन चिंदिया फल पाया। स्वामी हर नाम बजी बाधाई, हर प्रभ ठाकुर काज रचाया। तन हृदय नाम बिगासी, जन नानक बोले चौथी। लामे हर पाया प्रभ अविनासी।

जग में दुख पावे चोटा खावे अंत गया पछताया बिन नामे को बेली नाही पोत कटंब सुत पाई नानक माया मोह पसारा आगे साथ न जाई आ पूछो अपना सतगुर दाता किन बेदो तर तरिए राम सतगुर पाए चल।

प्रभु गुण तासे धन धन गुरु बड़ पुरख है मैं दसे हर शाबासे बड़ भागी हर पाया जा नानक नाम बिगासे गुर सज्जन प्यारा मैं मिलिया हर मार्ग पंथ दसाहा घर आवो चिरी बिछनिया।

उपजिया तत ज्ञान सोहरे पेये इक हर बलराम जियो। ब्रह्मे ब्रह्म मिलिया कोई न सके भिन कर बलराम जियो। बिखम पेखे बिखम सुनिए बिस्माद नदरी आया। जल थल मैयल पूर्ण स्वामी घट घट रहा समाया। जिसते उपजा तिसमाए समाया कीमत कह न जाए। जिसके चल न जाही लखणे नानक तिसे त्याए। राग सूही शांत महला पंजवा घर दूजा। इक ओंकार सतगुर प्रसाद गोबिंद गुण गावन लागे। हर रंग अंधन जागे हर रंग जागे पाप भागे मिले संत।

जग अंतर लाते सगल बिसूरे पूरन पुरख अचुत अविनाशी जस वेद प्राणी गाया अपना बिद रखिया परमेश्वर नानक नाम त्याया नाव निद सिदरिद दीने करते तोट न आवे काई खात खर्चत बिलछत सुख पाया करते की दात सवाई राम दात सवाई न खुट न जाई अंतर जामी पाया कोट बिघन सगले उन्नठ दुख न नेड़े आया शांत सहज आनंद कनेरे बिनसी भुख सवाई नान गुण गावे स्वामी के अचार्य जिस बढ़ियाई।

पूर्ण परमेश्वर तेर अंत न पार आवारा हम निमक न छोड़ा जी हर प्रीतम प्राण आधारो गुरु सतगुर कहया जी साचा अगम विचारो मिल साधु दीना तां लाम लीना जन मन दुख नाठे सहज सुख आनंद कनेरे हमें बिन्ठी गाठे सबके मत प्रभु ते बाहर राग दोख ते न्यारो नानक दास गोबिंद शरनाई हर प्रीतम मने सधारो मैं खोजित खोजित जी हर नेचर सो कर पाया सब अब अद्रव डिठे जियो ता चरण कमल चितलाया प्रभे बिनासी हाँ तिसकी दासी मरे न आवे जाए धर्म अर्थ काम सब पूर्ण मन चिंदी इच्छ पुजाए सरत सिमरत गुण गावे करते सिद्ध साधक मुन जन त्याया नानक शरण कृपा निध स्वामी बड़ पागी हर हर गाया इक ओंकार सतगुर प्रसाद बार सूही की सलोका नाल महला तीजा श्लोक महला तीजे सूहे बे सुहागणी पर पे रावण जाए फिर छोड़िया कर अपने मोही दूजे पाए मिठा करके खाया बहु साधों बधिया रोग शुद्ध पतार हर छोड़िया फिर लगा जाए बिजोग गुरमुख हो बे सो पलटिया हर राती सा शिगार सहज सच फिराव्या हर नामा और तार आज्ञाकारी सदा सुहागण आप मेली करतार नानक फिर पाया हर साचा सदा सुहागण नार महला तीजा सुहबिये निमाणिये सो सो सदा संभाल नानक जन्म सवारे अपना कुलपी छुट्टी नाल पौड़ी आपे तख्त रचायन आकाश पताला हुक्मे धरती साजियां।

पौड़ी इस जुग आप उपायन कर चोज बिदान पंच तात बिच पाइयन मोह झूठ गवान आवे जाए पवाइये मन मुखा ज्ञान इकना आप बुझायन गुरमुख हर ज्ञान भगत खजाना बख्शियन हर नाम निदान श्लोक महला तीजा सूबिय सूहा बेस छड़ तू ता पिर लगी प्यार सूहे बेस पर फिर किने न पायो मन।

चित्ते आयन जे सच्चे गुरु शब्द बिचारी। हमे मार मन निर्मला हर नाम और तारी, कोठे मंडप माड़ियां लगे गवारी। जिनकी ये तिसे न जाननी मन मुख गवारी, जिस बुझाए सबुझ सी सच

तेरे जीजन सब संत मारी सर्व चिंत तुद पासे जो तुद भावे सो ही चंगा एक नानकी अरदासे बलावन महला पहला आपे शब्द आपे निशान आपे सुरता आपे जाने।

करते रमा। बोलो पहिया राम नाम पद पावन वर संत भगत तारन वर भर परे रहा जल थले राम नाम नित गाई हर दुख विसारन राउ। हर किया सफल जन्म हमारा हर जपया सब दुख विसारन हारा। गुरु भेटिया है मुक्त दाता हार की हमारी सफल जाता। मिल संगति गुण गावनो मन राम नाम करियासा भव दूजा बिन सुबनासा विचासा। हुए निराशी सो जन मिली हर पासी कोई राम नाम गुण गावनो जन नानक तिस पग लाभनो।

एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद कबल संजोग मिलो प्रभा अपने पल पल ने सुधार जपने चानक प्रभ के नित्य आव कम सुमत जस प्रीतम पावो राव ऐसी कृपा करो प्रा मेरी हर नानक विश्व।

सागर अत भारी उधरो साधु सागर बाला रहाउ प्रभु सुखदाते सम्राट स्वामी जीव प्रसव तुमरा मालु ब्रह्म के बंधन काटो परमेश्वर नानक की प्रभु सदा कृपाल गुलाबल महला पंजवा सगल नंद किया परमेश्वर अपना बिर समारिया साध जना हुए कृपाला बिकसेसा परवारिया कार सतगुरु आप सवारिया बड़ी हर जा हर गोविंद की सुख मंगल कल्याण बीचारिया रहा बन तरन तिर पवन हरिया हुए सगले जी सदारिया मानिक से नानक फल पाए।

पंच चोर आगे भगे जप सासन एत पूंजी साबद खड़ो का लाभ गृह शोभा सेत निचलासन मिति चिंत नाई डोलेत परम भलावा मिट गया प्रापेत नेत गुण गभीर गुण नायका गुण कही है केत ज्ञान कपाया सा संग हर हर अमरेत बलावल महला पंजवा बिन साधु जो जीवना ते तो बरतारी मिलत संग सा प्रमिट।

जमदूत षड जाहे तुम्हारी कृपा ते छूटिए बिन से अहमेब सर्वकला सम्राट प्रभुरे गुरुदेव राओ खोत खोत खोजिया नामे बिन कूर जीवन सुख सब सा संग प्रभ मन सा पूर जित लाभ तित लगे स्याण सब जाली जा।

का शोरा ते जानी लाग माया तारी छत्र पाते छोड़ो ते आग रहाओ संतन का दाना रुखा सुसल दान गृह साग क्षति प्रकार ते भिखु समान सतजना का लूगरा उड़ नगन्ना होई साकत सिर पाओ रेशमी पहरत पद कोई साकत सो मुख जोर है अद बीचों टूटे हर जन की सेवा जो करे तो ऊते छूट है

के गुण ए प्रवताज रचे ज्ञान सो सुरलिए खेर हाउ सिमरहो सिंधो सास सास मत बिलम करे झूढ़ प्रपंच प्रभ सो रच हो तज घूरे नेह येन अनक एक वो रंग किए है होशी ए कर सेवा तिस पार गुरते मत लेह

सुख प्रभ चित आई, संतन के नंद हो ने तर गुण गाई राउ, ऊचे ते नीचा करे नीच खिन मैं थापे, किन कही न जाई ठाकुर प्रतापे, भेख तिला रंग रूप जल ने तन आया, सुपने का सुपना पया संचलिया कुमाया, कन कन सम्राट पर तेरी सर नाई, अर्धन सरण नानक जपे सत सत बल जाई।

इहो सागर सोई तरे जो हर गुण गाए सासन के संग बसे बड़ भागी पाए सुन सुन जीवे दास तुम बाणी जन आखी प्रगट पैसा लो मैं सेवा की राखी राव अग्न सागर ते काढ़िया प्रभ जल बजाई अमृत नाम जल शांतिया गुरु पै सहाई जन मन दो काटिया सुख धन पाया काटी सिलक प्रभो की अपने प्रभ पाया मत कोई जानो अमर कश सब प्रभ कै हाथ सर्व सुख नानक पाए संग संतन साध बुलावल महला पंजो बंधन काटिया प्रभु कृपाल दीन दयाल प्रभ पार ब्रह्मता की नजर नियाल गुरपुरी कृपा करी।

जा को कृपा करो प्रभ ताको लाभ सेव जदंदान अमृत पिया मंतन आनंद नानक गुण बिसरे परमानंद बलावल मल्ला पंजो तुसन बुझी ममता गई नाठे पै परमा तित पाई आनंद पया गुरु की ने धर्मा गुर पूरा राध्या बिनसी मेरी पीर तन मन सब शीतल पया पाया सुख वीराव सोवत हर जप जागिया पेखिया विस्माद पी मत तर तर तर पतासिया था।

गिरीते हाथी करे टूटा ले गांडे अंड जजेरा शेता जोत पोजा प्रभ की एक किरत कित कमावन सर फल रविये हर निरत हम दे।

पूर्ण भंडार जन कल मंत्र बसे प्रवागम पार बात कमाव दसा सुखे किस उन्ना दिस संत प्रसाद भेटे प्रभु पूर्ण जगदीश जय जयकार सबे करे सच थान सुहा।

सर्व सिद्धार गाइये सफला मनावहे साध साध मुक्ते कह सुन दास मनावहे सुख सहज कल्याण रस पूरे गुर कीन जी सकल दयाल भई हर नाम चीन रहाऊ पूरी हो सर्वतर मैं प्रभु गुणी गही।

सुखपाया साधु संग सिमरत गुण तासराओ सुन स्वामी अरदास जान तुम्हें अंतर जामी थान थान तराव रही नानक के स्वामी बिलावल महला पंजवा ताती वाव न लगाई पारवं सरनाई।

सेव तो सेव सेव साध सेव सदा करो किरताई अपैदान पाव पुरगदाते मिल संगदार गुण गाए दसना अघ अघ गुण राती नैन दस रंग लाए हो कृपाल दीन दुख पंजन मोहे चंद दे बिसाए साबू तले तले सब पर देट देटाई अपमान खोए खोए खोई हो मुखो सतगुर मंत्र दड़ाई अतोल अतोल अतोल मैं तुलिए भगत बशर कृपाई जो जो स

उठत बैठत सोवत जागते मन तुझे चतार सुख दुख इस मन की व्यर्था तुझी आगे सारे तू मेरी ओट बल बुध धन तुम ही तुम्हें मेरे परिवार है जो तुम करो सोई पल हमरी भीख नानक सुख चरनारे बिलावल महला पंजवा सुनियत प्रभ तो सरोदारन मोह मगन पत संग प्राणी ऐसे मने विसार न रहाओ ਸੱਚ ਵਿਖਿਆ ਲੇਖ ਰਾਜ ਕਿੰਨੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਾਤੇ ਡਾਰਨ ਕਾਮ ਕਰੋ ਲੋ ਰਤ ਨਿੰਦਾ ਸਤਸੰਗ ਬਦਾਰਨ ਇੰਤੇ ਕਾਢ ਲਿਓ ਮੇਰੇ ਸਵਾਮੀ।

को मंदिर सासवारी पावतले जरावते ऐसे गढ़ में ऐठ हैटी लो फूल फूल क्या पावत है। पांच दूत मूड पर ठाडे केस गए फिर आवत है देखना आवे अंदर।

जी चित बो जैसे पांत बोली रहाओ सह सुमायो गुरे बतायो रंग रंगी मेरे तन की चोली प्रेमुख लागो जुबड़ पागो सुहागा मारो कतो ना डोली रूप ना धूप ना गंध ना दीपा ओत पोत अंग अंग संग मौली को नानक पैरवी सुहागण अत नीकी मेरी।

पूर्ण पूरे संपूर्ण शीतल शांति आरदेई काम क्रोध तृष्णा अहंकारा तांते हुए सगल खई सा संतोख दया धर्म सोच शांतनते हो मंतलई कहो नानक जिन मनो पछाने जिनको सगली सोझ पई बुलावल महला पंजवा क्या हम जी जंत बिचारे बन न साके एक रोम आई ब्रह्म हे सिद्ध मन इंदिरा बेअंत ठाकर तेरी गत।

नेत तिस रसना का मूल किस नाही। हर गुण गावत पर उपकार नेतो तिस रसना का मूल किस नाही। राव कुल समूह देखन पीतर जन्म जन्म की मल डाही। सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपनांद सेती बिखिया बन गाई। जन प्रभु के मोहित पाई भव सागर पार पराही। संत सेवक भक्त हर ताकी नानक मन लागा है ताही। बुलावल महला पंजवा तीरों देख तुम्हारे रंगा। तुही स्वामी अंतर जामी तुही।

नानक साधन परियो दुख भंजन अंतर बाहर पेख जूरे ब्रावल महला पंजवा दर्शन देख तो दोख नसे कभी न हो तेहता गोचर जी कै संग बसे राहो प्रीतम प्राण दार स्वामी तू रहे प्रभांतर जामी क्या गुण तेरे सार समारी सास सास प्राप्त तुझे चितारी कृपा निध प्रभ दीन दे अल्लाह जी जंत की करो प्रतपाला आठ पैर तेरा नाम जन जापे नानक प्रीत लाई प्रभ आपे ब्रावल महला पंजवा तन तन जोवन चलत गया राम नाम का भजन न कीनो कर तो बेकार निसपोर पया रहा अनक प्रकार भोजन नित खाते मुख दंता कस खीन खया मेरी मेरी कर कर मुख पाप करत न फरी दया महाविकार कोर दुख सागर तिसमें प्राणी गलत भया सन परे नानक स्वामी की बाँ भगत प्रभ काढ लया बलावल महला पंजवा अपना प्रवाया चीत दुश्मन दुष्ट रहे चख मारत कुशल पया मेरे भाई मीत राव गई ब्याह दो पाद सब नासी अंगीकार कियो करतार शांत सुख अर आनंद कलेरे प्रीतम नाम हृदय उरहार गियो पिंड तन रास प्राव तेरी तू सम्राट स्वामी मेरा दास अपने को रखनहारा नानक दास सदा है चेरा बलावल महला पंजवा गोमद गोविंद सिमर हुआ कल्याण मिटी पाद पया सुख साचा अंतर जामी।

भगत बिना सहसा न चुके, गुर एहो भेद बतावै रहाओ, कहाँ पयो तीर्थ वर्त किए, राम शरण आवे जोग जोग निपल ते मानो, जो प्रभ जस बिसरावै मान मोह दोनों को पर हर, गोविंद के गुण गावै, को नानक के बिद को।

कृष्ण चले बनामी साचा नाम साचे सब जाने आपिया मिले झूठे बमान है करूँ नाम सदा सदा बखाने सब सेवा दूजे के मन जाई हो गण काट का मतलब गाई कंजन गाय ज्योति जोर समाई सब तुम ये बड़ी जाए जो काटे हिर नाम साहे नाम तेरे दास रूपाई गुरु मान कल सर को समझ लिया मुख द्वार गान भरत मन प्रवाणी सदार बलाव मुल्ला चौथा आठ बनिया कर चार माई को अंकार सब सादा पिया बखाए हो मीठे अंदन हर गीत गवैया गुरु वासे कंचन काया निर्भर ज्योति जोर मलैया मैं हर हर नाम हर समयी रमैया कृपा रहने सको मैं नावे गुरु मुखार पाठ भरैया रहा एक ग्रह हो दस द्वार जाके कृपा जो लगैया अर्थ धर्म साहब हिर ले जावे मन मकान से खबर न गैया कंचन कोट को मन के भरिया जाके ज्ञान सत हो ली कर करे रू वाहे गुरु गाने गुर का शाद पकड़ बंध पैया ना बोत वाहे बोह ताके उठ शाद गुरु पार लगैया जम निगा तीन डावे नक तस के चोर लगैया ਹਨੂੰ ਗਾਇ ਸੁਖ ਦਿਨਾਤੀ ਮੈਂ ਹਰ ਜਸ ਕਹਿ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਈਆ ਗੁਰੂ ਮਨ ਮੈਂ ਕਰ ਆਵੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਗੋਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆ ਨੈਣੀ ਦੇਖ ਦਾਸ ਮਨ ਦੇ ਵੇ ਸਰਵਣ ਬਾਣੀ ਗੁਰ ਸਭ ਕਈਆ ਸੋਹਣ ਸੋਹਣ ਆਪ ਦੇਵਾ ਬਿਨੇ ਦਾਸ ਰਾਮ ਵਾਰ ਬਿਆ ਦਾ ਗੁਣ ਮੈਂ ਮੂਰ ਕੈ ਤੁਰ ਬਣਾ ਗੁਰ ਮਨ ਲਈਆ ਇੱਕ ਦੇਖ ਸਭ ਸੰਗ ਜਾਣ ਜਦੀ ਆਵੇ ਸਭ ਰਾਮ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜੋ ਸਭ ਕੋ ਪੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਰਾਮ ਦੀ ਮੇਰੇ

समावे साग मिसा संतोष शरीर सासमंद भरे निर्मल नीर मजन सीच सील सचर दे विचार गुर कै शब्द पावे सापार मन साचा मुख साचो पाए सचन साने ठग न पाए अष्टमी अठ सिद्ध बुसादी सचन केवल कर्म राधे पुण पण एक नी बिसराओ ते निरंजन साचो नाओ

खान उमराव सिखदार है इतने सब हर के किए जो किश हर करा हर करावे सो ओए करे सब हर के हथिए सो ऐसा है सपना का प्रभ सतगुर के बल है तिन सब बार चारे खानी सब शिष्य गोले का सतगुर अगे कार कुमावन को दिए हर सेवे की ऐसी बड़ियाई देखो हर संतो जिन बिचों काया नगरी दुश्मन दूत सब मार कटिए हर हर कृपाल हुआ पहुआ भगत जना ऊपर हर अपनी कृपा कर हर आप रख लिए श्लोक हो नतीजा अंदर कपट सदा दुख है मन मुख ध्यान लगे दुख विचकार कमावनी दुख बाते दुख आगे कर्मी सतगुर पेटिए तां सच नाम ले बिलागे ना सहजे सुख होए अंदर परम पो भागे महला तीजा गुरमुख सदा हर अंग है हर का नाम मन पाया गुरमुख बेखा बोलना नाम जप तो सुख पाया नाम गुरमुख ज्ञान प्रगासिया तिमर अज्ञान अंधेर चंगा चुकाया मन हाला तीजा मन हमले मरे गुवार गुरमुख निर्मल हार रख्या अवतार पंत नानक सुन जन पाए सतगुर सेवो हमें मल जाए अंदरों अंदर सह संसा दुख व्यापे से तंदा नित मार दूजे पाए सुते गमन जागे माया मोह प्यार नाम न चेते सब न बिचारे एह मनुख का अविचार हर नाम न पाया बिरथ जन्म गवाया नानक न जम मार करे खुआर पौड़ी जिसनु हर भगत सच बख्शा सो सच्चा सा जिस की मोहताजी लोक अड़दा होर तू हट ना बथ ना बेसा जब भगत जना को सन्मुख होवे सो हर ना रास लय बेमुख पासा पहा हर के नाम के व्यापारी हर भक्त है जम जगाती तिना ने न जाओ जा नानक हर नाम तन लद्या सदा बेप्रवाहो श्लोक महला तीजा इस जुग में भक्ति हर तन खटिया और सब जग तो भरम भुलाया गुरप्रसादी नाम मन बसिया अंदर नाम ते आया भिख्या मह उदास हमें सब जलाया आप तरिया कुल उदरे तांजने दी माया सदा सहज सुख मान बसया सच्चे सिवो ने बुलाया ब्रह्मा विष्णु महादेव त्रै गुण भुले हमें मोह बुझाया पंत पढ़ मोनि भुले दूजे भाई चतराया जोगी जंग सन्यासी भुले बेण गुर तत् न पाया मनुख दुखे सदा परम भुले तीन व्यथा जन्म गवाया नानक नाम रते से जन समधे जे आपे बख्श मिलाया महला तीजा नानक सो सराय जिस बस सब किश होए तिसो सरेब प्राणिया तिसबिन अपना कोए गुरमुख अंतर मन बसे सदा सदा सुख होए पौड़ी जीनी गुरमुख हार नाम तन न खट्यो से दिवालिए जुग माहे ओए मंगदे फिरे जा सब जागत मैं कोई मुँह थुक ना तिनको पाहे पराई बखेली करे अपनी प्रतीत खोबन पग सगवा भी आप लिखाए जे तन कारण चुगली करे सो तन चुगली हथ ना वे ओए आप आवे तिथे जाहे गुरमुख से पाए हर तन मिले तिथों कर्म ही लै ना सके होर थै दे सद संत हर तन नाहे सलोक माला तीजा गुरमुख संसार मूल न होवे चिंता बिचों जाए जो किश होए सो सहजे होए कहना किशु न जाए नान तिन का आख्या आप सुने हैं जे लयन पन्ने पाए महला तीजा काल मार मन सा मन स्मण अंतर निर्मल नाहो अंदर जागे सकदन सोभे सहजे अमृत पियाओ मिठा बोले अमृत बाणी अंदर हर गुण गाओ निज घर बासा सदा सुख दे नान ते ना मिलिया सुख पाओ पौड़ी हर तन रतन जवेहरी सो गुर हर तन हर पासों देवाया जे किसे कह कि दिसावे तां कोई कह मंग लै अके कोई कह दवाए हे ए हर तन जोर किते किसे नाल ना जाए बंडाया जिसनु सतगुर नाल हर साधा लाए तिस हर तन वंड हथ आवे जिसनु करते तुर लिख पाया इस हर तन का कोई शरीक नाही किसे का खत नाही किसे के सीव बने रोल नाही जे को हर तन की बखीली करे तिसका मुँह हर चौं कुंडा विच काला कराया हर के देते किस नाल किसे जोर बखीली न चले दह दह नितिन चढ़ी सवाया सलोक मला तीजा जग तुलंदा रख ले अपनी कृपा तार जित द्वारे उभरे तेते लह वार सतगुर सुख विखा लिया सच्चा सब विचार नानक बरना सुजे हार बिन बख्शन हार महला तीजा हुमे माया मोहनी दूजे लगे जाहे नाहे मारी ना मरे नाहे हट बिकाए गुर के सब पजा लिए ताहे बिचों जाए तन मन होवे उजला
ना बस मन आए। नानक माया का मान शब्द है, गुरु मां पाया जाए पौड़ी। सतगुर की बढ़ियाई सतगुर दिती तुरु हुक्म, बुझ निशान पुति पतही पर जवाई सकी। अगो पिछो टोल ठा लाहे उन सबना का अभिमान जिथे को।

रहो। काशी तुन उपजे तुन काशी जाही, काशी फूटी पंता तुन कहाँ समाई। त्रिकुटी सन में पेख्या कट हूँ कट जागी, ऐसी समाचरी ही कट माहे त्यागी। आप आपते जान्या ते समाना, कहो पीर या अब जान्या गोविंद मन माना। बिलावल चन कमल जाके हृदय बसे सो

कह कबीर मेरा मन मान्या राम प्रीत कियो लै देव बिलावल बाणी भगत नामदेव जी की ओंकार प्रसाद सफल जन मोको गुर दीना सफल जन मोको गुर कीना दुख विसार सुख अंतर लीना ज्ञान अंजन मोको गुर दीना राम नाम बिन जीवन मन कीना राम नाम बिन जीवन मन ही न रहा नाम दे सिमर का जाना जग जीवन से हो जियो समाना बिलावल बाणी रविदास जस भगत की एक ओंकार प्रसाद दा देख सब को हसे ऐसी दशा हमारी असदा दे सिद का तले सब कृपा तुम्हारी तू जानत में किश नहीं पवखन राम सगल जी सनागती प्रभ पूर्ण काम रहाओ जो तेरी सनागता तिन नाही पार ऊच नीच तुम ते तरे आलज संसार कह रविदास अकथ खताब काय करीजे जैसा तू तैसा तू क्या उपमा दीजे बिलावल जो ए कुल साध वैष्णो होए वर्ण अवर्ण रंक नहीं सर बिमल बास जानिए जग सोए रहाओ ब्रह्म बैस सूद यार खत्री डोम चंडार मिलेश मन सोए होय पनीत भगवत भजन ते आप तार तारे खोल दोए तन सो गाओ तन सो उठाओ तन पनीत कुटुंब सब लोए जिन पिया सार रस तजिया रस होए रस मगन डारे बिख खोए पंड सुर शतरपत राजा भगत बराबर और ना कोए जैसे पुरैन पात रहे जल जाल समीप पंडरदास जन्मे जगम ओए बाणी सदने की राग बिलावल एकुंग प्रसाद निरपकन्या के कारण एक पिया पिख तारी कामरथ स्वार्थी जाकी पै सवारी तब गुण कहा जगत गुरा जो कर्म न नासे सिंह सारन का तजाइये जो जम्बक ग्रासे रहो एक बूंद जल कारण चौतरक दुख पावे प्राण गए सागर मिले फुन अकाम न आवे प्राण जो था के थे नहीं कैसे बरमावो बूढ़ मुहे नौका मिले कहो काहे चढ़ावो मैं नाही कश हो नहीं कश आहि न मोरा और सल जा राख लियो सदना जान तोरा एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपोह निर्भैर काल मुजिन सुभंग गुर प्रसाद राग गौंड चौपदे महला चौथा कर पहला जे मन चेत आस रखे जे मन चेत आस रखे हर उपर ता मन चिंदे अनेक अनेक फल पाई हर जाने सब के जो जी वाते प्रभ काल्या किसका केल किसका एक तेल ना गवाई हर तिसकी आस कीजे मन मेरे जो सब मैं स्वामी रहा समाई मेरे मन आसा कर जगदीश गुसाई जो बिन हर आस अवर काहू के कीजे सा निपल आस सब व्यथी जाई रहा जो जिसे माया मोह कुटुंब सब मत तिसकी आस लग जन्म गवाई इनके किस हाथ नहीं कहा करे ये बपड़े इनका वाया आकाश ना बसाई मेरे मन आस हर हर प्रीतम अपने की जो तुझ तारे तेरा कुटुंब सब छड़ाई जे किश आस अवर करे परमित्री ही मन तू जाने मत तू जाने तेरे किते काम आई ये आस परमित्री पाव दूजा खिन मैं झूठ पिन सब जाई मेरे मन आसा हकार हर प्रीतम साचे की जो तेरा कालिया सब थाए पाई आसा मनसा सब तेरी मेरे स्वामी जैसी तू आस करावे तैसी के वास कराई किस किस किसे के हाथ नहीं मेरे स्वामी ऐसी मेरे सतगुरु बूझ बजाई जा नानक की आस तू जाने हर दर्शन देख हर दर्शन तिपताई गौंड महला चौथा ऐसा हर सेवे ने त्याई जो खिन मैं खिलविक सब करे बिनासा जे हर त्याग अवर की आस कीजे ता हर निपल सब का अलग वासा मेरे मन हर सेवा सुखदाता स्वामी जी सेवे ऐसा भुख लहासा मेरे मन हर उपर कजे परभाषा जह जाइए ते नाल मैं स्वामी हर अपनी पैज रखे जाना दासा रहाओ जे अपनी व्यथा कहो आवारा पह ता आगे अपनी व्यथा वह वह बहुत कटासा अपनी व्यथा कहो हर अपने स्वामी पह जो तुमरे दुख तत्काल कटासा सो ऐसा प्रभ छोड़े अपनी व्यथा अबरा पह कहिए अबरा पह कह मन लाज मरासा जो संसारी के कुटुंब मित्र पाई जिससे मन मेरे ते सब अपने स्वायल मिलासा जित दिन उनका स्वाव होए न आवे तित दिन नेड़े को न टुकासा
मन मेरे अपना हा सेव दें दाती जो तुर उप करे दुख में सुखासा जिसका प्रभासा कि ओ कीजे मन मेरे जो अंति अवसर रख ना सकासा हर जप मंत गुरु उपदेश लै जप तिन अंत छाए जिन हर पीत चितासा जन नानक आंदन नाम जपो हर संतो ए छूटन का साचा प्रभासा गौण महला चौथा हर सिमत सदा ना होए आनंद सुख अंतर शांत शीतल मन अपना जैसे सग सूर बहु जलता गुरु सास देखे दह जाए सबत अपना मेरे मन आंदन त्याए नाम हर जपना जहाँ कहा तुझे राखे सब ठाए सो एहसास प्रभ सेव सदा तू अपना रहो जहाँ मैं सावन दान सो हर जप मन मेरे गुरम खोज लोह हर रतना जिन हर त्याया तिन हर पाया मेरे स्वामी तिनके चरण मलो हर दसना शब विशान राम रस पावो ओए उत्तम शांत प्यो बड़ बढ़ना तिस जन की बड़ियाई हर आप बधाई ओ कटे न किसी की कटाई एक तिल तिल तिल ना जिस ते सुख पावे मन मेरे सो सदा त्याए नित कर जोरना जा नानक हर दान एक दीजे नित बसे हृदय हरि मोहे चरना गौण महला चौथा जितने सा पा समराव सिखदा चौधरी सब मिथ्या झूठ पाओ दूजा जान हर विनाशी सदा सिर चल तिस मेरे मन भज प्रवान मेरे मन नाम हरि भज सदा दीवान जो हर मैल पावे गुरबचनी ते जेब डबर नाही किसे किसे दा तान रहाओ जितने तनबंत कुलवंत मिलखबंत दिसे मन मेरे सेव सब बिंस जाए जो रंग कुसुम्ब कचान हर सात नन्या सदा सेव मन मेरे जित हर दरगे पावे तू मान ब्राह्मण सती सूद वैस चार बन चार आश्रम है जो हर त्यावे सो प्रधान जो चंदन निकट बसे हेड बपड़ा तो सत्संगत मिल पतत प्रवान ओ सब ते ऊंचा सब ते सूचा जाके हृदय बसया भगवान जा नान तिन के चंद पखाले जो हर जन नीच जात सेव कहान गुण महला चौथा हर अंत जमे सब ते वाते जे हर कराए ते हा को करिए सो ऐसा सेव सदा मन मेरे जो तुझनो सब दूर रख लिये है मेरे मन हर जप हर नित पढ़िए हर बिन कोर्म को माजबा न सके ता मेरे मन कायत करिए है राव हर प्रपंच किया सब करते बिच आपे अपनी जोत तरिए हर एक को बोले हर एक बुलाए गुर पूरे हर एक दिखिए हर अंतर नाले बार नाले कहो तिस बासो मन क्या चोरा ये निकट सेवा कीजे हर केरी ता मेरे मन सर्व सुख पाइए जिस दे बास सब किश सो सब सावधु बड़ा सो मेरे मन सदा त्याइए जा नानक सो हर नाल है तेरे हर सदा त्याए तू तो दल है छड़ी है गौण महला चौथा हर दर्शन को मेरे

प्रीतम की कोई बात सुनावे सो भाई सो मेरा वीर मिल मैं सखी गुण कहो मेरे प्रभु के ले सतगुर की मंतीर जा नानक आस आस हर आस जा नानक हर आस पजावो हर दर्शन सांत श्री रशका पहला रागौन महला पंजवा चौप दे घर पहला कुंग प्रसाद सब करता सब भुगता हराओ सुनतो करता पिखत करता अधिष्ठो करता निर्दिष्टो करता उपत करता परलो करता व्यापत करता लिप्तो करता भगत करता बूढ़त करता आवत करता जात भी करता निर्गुण करता सदगुण करता गुर प्रसाद नानक समिष्टा गौण महला पंजवा फक मीन का कप की न्याई तूज रिहो कुंसांबले पग तारे सास लिखे ले तो उदरे हर गुण गायले मन समझ छोड़ वायले अपने रहन कोठो न पावे काय पर के जायले रहो जो मैगल इंद्री रस परि रहो तू लाग पर कुंट आंबले जो पंखी कतर होए

नमो मार्जी की रास नमो संगी जात कत जात नमो हे मन लागा मिठा जल थल सामे नमो जिठा नामे दरगे मुख उजले नमो सगले कोल उदरे नाम हमारे कार सीध नाम सांगे मनवा गीत नामे ही हम निरपया नामे आवन जावन रहे गुरपुरे मेले गुण तास को ना सुख सजन वास गुण महला पंजवा नम को जो दे तो मान सगल पुखे को करता दान गर्व कोर में रखनहार ती ठाकर को सदा नमस्कार ऐसो प्रभ मन माहित आए काट अब काट जात कते सहाय रहो रंक रहो जाके एक समान की रहस सगल पुराण व्यो पूछ न मस्त तरे जो किश करे सो आपे करे जाकांत न जान सकोए आपे अवन न सोए आपे आकार आप निकार काट काट काट सब काट आधार नाम रंग पात पै लाल जस काते संत सदा निहाल नाम रंग जान रहे काए नानक तिन जन लागे पाए गुण महला पंजवा जाके संग ए मन निर्म जाके संग हर सिमन जाके संग किल विख होए नास जाके संग हृदय प्रगास से संतन हर के मेरी मीत केव नाम गाये जाके नीत रहाओ जाके मंत्र हर मन बसे जाके उपदेश परम पो नसे जाके कीर्तन निर्मसार जाके रेन बंशे संसार कोटपत जाके संग उदार एक निरंकार जाके नाम आधार सर्व जिया का जन पियो कृपा कृपा निदान नंजन दियो पार बम जब पै कृपाल जब पेटे गोसाधर दयाल दिन रह नानक नाम ते आए सुख सहजा नंद हर नाए गौंड महला पंजवा गुर की मूर्त मन में ध्यान गुर के सब मंत्र मन मान गुर के चांदी दे लै तारो गुर पार बम सदा नमस्कारो मत को परम पुले संसार गुरबिन को न उतर सपार रहाओ पुले को गुर मार पाया अवर त्याग हर भक्ति लाया जन मन की त्रास मिटाए गुरपुरे की बेअंत बढ़ाई गुर प्रसाद कमल कमल विगास अंधकार मह पिया प्रगास जिन किया सो गुर ते जानिया गुर ते गुर के पाते मुग्ध मन मानिया गुर करता गुर करन जोग गुर परमेसर हैपी होग को नान प्रभे जनाही बिन गुर मुक्त ना पाइये पाई गुण महला पंजवा गुरु गुरु गुर कर मन मोर गुरु बिना मैं नाही होर गुर की टेक रो दिन रात जाकी कोई न मिटे दात गुर परमेसर एको जान ज्योत पावे सो परवान रहो गुर चानी जा का मन लागे दुख दास परमता का भाग है गुर की सेवा पाए मान गुरु पर जाइये कुर्बान गुर का दर्शन देख निहाल गुर के सेव की पूर्ण काल गुर के सेव को दुख न व्यापे गुर का सेव जापे गुर की मैं कथ न जाए पार मांगो रिहा समाये को न जाके पूरे भाग गुर चानी ताका मन लाग गौंड महला पंजवा गुर मेरी पूजा गुर गोबिंद गुर मेरा पार मांग गुर भगवंत गुर मेरा देवल खो सर्व पूज चरण गुर दिसियो गुर बिन अबना अवर नाही को था अंधन जपो गुरु गुर नाओ रहो गुर मेरा ज्ञान गुर ध्यान गुर गोपाल पुरख भगवान गुर की शान रहो कर जोर गुरु बिना मैं नाही होर गुर बहुतारे पावत अपार गुर सेवा जमते छुटकार अंधकार में गुर मंत्र उजारा गुर के संग सगल निस्तारा गुर पूरा पाइये बड़ पागी ही गुर की सेवा दुख ना लागी ही गुर का शब्द मेटे कोई गुर नानक का नानक हर सोए गुण महला पंजवा राम राम शंकर बिहार राम राम राम प्राण धार राम राम राम कीर्तन गाए राम त राम सब रेहो समाए सांझ ना मिल बोले राम सब ते निर्मल पूर्ण काम रहाओ राम राम तन संच भंडार राम राम राम कर आहार राम राम बिसने जाए कर कृपा गुर दिया बताए राम राम राम सदा सहाय राम राम राम निवलाए

मोह अपरंपर होता आया, पाप उनका इस लेपना लागे, काटकर अंतर साधी जागे। तीन गुणा एक साक तो पाया, महा माया ताकि है छाया, अशाल छेद अपेद दयाल, दीन दयाल सदा कृपाल, ताकि गत मित कछु न पाहे, नानक ताके बल बल जाए। गौण महला पंचमा, संतन के बल हारे जाओ, संतन के संग राम गुण गाओ, संत प्रसाद के लिए सब गए, संत सारन बट भागी पाए, राम जात काश बिघन व्यापे, गुर प्रसाद अपना प्रभ जापे राव, पार वन जब पह दयाल, साधु जानकी करेर बाल, काम क्रोध इस तंत जाए, राम रतन बसे मन आए, सफल जन्म ताका प्रवान, पार वन निकट कर जान, पाए पाए प्रभ कीर्तन लागे, जन्म जन्म का सोया जागे है, चरण कमल जा का जन का दार, गुण गोविंदरो सच बपार, दास जना की मनसा पूर, नान सुख पावे जन तूर, रागौण महल रागौण राष्ट्रपतिया महला पंचम का दूजा कु कर प्रसाद, कर नमस्कार पूरे गुरुदेव, सफल मूर्त सफल जा की सेव।

भगनाथ जी का दाता जिसे जनावत तू जाता जो उपाय हो तिस तेरी आस सगल अराधे प्रगुण तास नान ते तास तेरे कुर्बान नान दास तेरे कुर्बान ब्यान तो साहब मेरा मेहरमान राम कली महला पंजवा रखना दयाल कोट पव खडे कोट पव खंडे निमख ख्याल सगल राधे जंत मिलिए प्रभ गुर मिल मंत जीवन को दाता मेरा प्रभ पूर्ण परमेश्वर स्वामी काट कर राता मेरा प्रभ रहाओ ताकि गही मन होट बंधन ते हो छोट हृदय जप पर मन आनंद मन पा माहे पै नंद तन तन हर सन जीवन रूप हर चन संतन के प्राण दार उचे ते उचा पार सो मात सार जित हर समरीजे कर कृपा जिस आपे दीजे सुख सहजन आनंद हर नाओ नानक जपिए गुर मिल नाओ राम कली महला पंजवा सगल सियान पछाड करके कर सेवा सेवक साज अपना आप सगल मिटाए मन चिंदे सही फल पाए होए सावधान अपने गुर को गुर सेवो आस्था मानसा अपूर्ण होवे पावे सगल नान गुर सेवो रहा दूजा नहीं जाने क्यों कोई सतगुर निरंजन सोए मन का कर रूप न जान मिली न माने मान गुर की हाज टेक टकाए अबर आस्था सब लाए हर का नाम मांगन दान दान दरगे पावे मान गुर का बचन जप मंत इहा भगत सार तत सतगुर

प्रेम परजोरी सुखमान सार तरयो बाशर खोज खेद न पायो नह फुन रोज सिद्ध सिंध समायो कट के माहे कर्ण हर कश किश आचार्य नाहे जो छुटो तो जाहे प्याल जो काढ़ो तो नदर निहाल पापोन हमरे बस नाहे रस असगर नानक गुण गाहे राम कली महला पंजवा ना तन तेरा ना मन मोह तोहे माया मोह व्यापिया तोहे कुदम करे गाढ़ जो शेल अचिंत जाल काल चक्कर पेल हर चरण कमल सनाहे राम नाम जप संग सहाय गुरु पावे साच नार हाव उन्हें काज न होवत पूरे काम क्रोध मद सादे चूरे करे विकार जी रह के ताई गाफ संगन तसुआ जाई अतारत तो अनकशाल जाने कोडी कोडी कर खाक सिर शाने जिन दिया तिसने चिते मूल निपचा मिथ्या लोभ न उतरे सूल परम जब पहे दयाल एह मन हुआ सादर बाल हस्त कमल अल्लाह लीनो लाए नान साचे सा समाये राम कलीम हला पंजवा राजा राम की सुनाए निरपो होए गोविंद निरपो पै गोविंद गुण गावत सात संग दुख जो जाए रहा जाके राम वसे मन माही सोजन दुत पेखत नाही सगले कास भारे अपने हर हर नाम रसन नित जपने जिसके मस्तक हाथ गुर धरे सो दास अंदेसा काहे मरे काहे करे सो दास अंदेसा काहे करे जन्म मरण की चुकी कान पूरे गुरु पर कुर्बान गुरु परमेश्वर पेट निहाल सो दर्शन पाए जिस होए दयाल पर ब्रह्म जिस कृपा करे सा सो पाव जल तरे अमृत पीवो साध प्यारे मुख उजल साचे दरबारे आनंद करो ताज सगल बिकार नानक हार जप उतरो पार राम कली महला पंजवा इतन ते बिसंतर भागे माटी को जल दह जस त्यागे उपर चरण तले आकाश कट में सिंध की ओ प्रगास ऐसा समरथ हर जीव आप निमखन विसर जी भगतन के आठ पैर मानता को जा प्रभाव प्रथमे माखन पाछे दूध मेलू किनो साबन सूद पैतो पैते निपो दाता फेरे होंदी होंदी कौन होंदी है देही गुत बिदेही जिसे सगले साज का जगदी से ठगन ठगदा ठागे बिन बखर फिर उठ लागे संत सभा मेल करो बिख्यान सिमर साध भेद पुराण ब्रह्म विचार बिचारे कोय नानक ताकि परमगत होए राम कली महला पंजवा जो ज्योतिष पावे सोथिया सदा सदा प्रभ की हर की सुनाए प्रभ बिन नाही आन बिया रहा उत्कल तर लक्ष्मी जैसे इनमें

सदा सुख होए। नींद सुहेली नाम की लागे भूख, हर सिमत बिन से सब दुख। सजना न करो मेरे पाए, गुरपुरे सब चिंत मिटाई। आठ पैर प्रभ का जप जाप, नानक रुख राखा हुआ आप। आठ पैर प्रभ का जप जाप, नानक राखा हुआ आप। राग राम क्री महला पंजवा।

0: कोई कहे फोन बेकौंठ सुधावे अजामल को अंत काल में निरान सोद आई जांगत कहो जोगी सरबास्त सोगात छिन्न में पाई नान गुना इनका से विद्या तन्म कौन गज की ना वेद राम का दे कब दान तह दीना राम कली महला नोमा साधो कौन जुगत अब की जय है जाते दुर्मत सगल विनाशे राम भगत मन पीजे राम मन माया में है उजर हुए उजन आकाश ज्ञान कौन राम जग जाके स्मरे पावे पद निर्वाण वह दयाल कृपा संजन तब ही बात बताए सर्व धर्म मानो तह किए जय प्रभ कीत गाये राम नाम नर निस्वासर में है निमखे एक और तारे है जमकत मिटे नानक अतः अपन जन्म सवारे राम कली महला नमा प्राणी नारायण सोदल है छिन छिन औद कटे निस्वासर बेथा जात है देह राव तरना पो बिखो से खोयो बालपन अज्ञान विद प्यो अज होने समझे कौन कुमत उर्जाना मान जन्म दियो जय ठाकुर सोते क्यों बिसरायो मुक्त हो तो नर जाके सिमरे निमकना ताको गायो हो माया को मद कहते संग न काहु जाही नान कहते चेत चिंतमन हो है अंत सहाई रामकली महला पहला अश्वजी कुंकार सत प्रसाद सोई चांद चढ़े सोता है सोई दिन तप्त रहे सता तीसो पौन चुनाए जुग जी खेले थाव कैसे जीवन तल निवार होवे परवाना करें दिगाना काल लखन विचार इते सुनाया सुनिए तीस पास ना बैठा दाता दान करे तह नाही महल उसार ना बैठा जे को सत करे सो शिजे तप कर तप न होई ही जे को नो बलै बदनामी काल के लखन ही जिस सिकदारी तिसे कुआरे चाकर कहे डाना जा सकदाए पवंजी जंजीरी ता चाकर होथो मारना आ गुणा काल आये तै जो केरा रहत पासो जे गुण देहता पाइये रव काल कवाले सरा निवेड़ी काजी तिसना कृष्णा हुआ बाणी ब्रह्मा भेद थरवण करनी किरत होलिया पत बिन पूजा सत बिन संजम जत बिन काहि जनेऊ नावो तो वो तिलक चाव सोच बिन सोचना होई कल प्रवान कतेब कुरान पोथी पणत रहे प्राण नानक नाव पिया रहमान तू कर करता तू एको जान नानक नाम मिल जाए एदू उपर कर्म नहीं जे कर होंदे मंगन आई फिर ओलामा मिले तही राम कली महला पहला जग प्रभु दे मड़ी बधावे आसन त्याग काहे साचम पावे ममता मोह काम हितकारी ना उधूती ना संसारी जोगी व्यास रहो विदा दुख भागे कर के मान लाज न लागे रहो गावे गीत न चीनी आप क्यों लागे निवरे प्रताप गुर के सादर चे मन पाए भिख्या सह विचारी खाए भस्म चाहे करे बखंड माया मोह सहजम डंड फुटे खापर भिख न पाए बंधन बाध्य आवे जाए बिंद ना के जति कहावे माए जा मागत त्रै लुभावे निर्दया नहीं जो तो उजाला बूढ़ तो बूढ़े सर्वजन जाला पे करे खिंता बोह थटुआ टूठो खेल खेले बो नटुआ अंतर अगन चिंता बो जारे बिन कर्मा कैसे उतरस पारे मुंद्रा फाटक बनाई कान मुत नहीं विद्या विज्ञान जीवन इंद्री साधु लुभाना पशु पहे नहीं मिटे निशाना त्रिविध लोगा त्रिविध जोगा सब विचारे चुख सोगा उज्जल सास सो सावध सोए जोगी जोगत विचारे सोए तुझ पे नौ निद तू करने जोग थाप थाप करे सो हो गए जातक सात संजम सासुचेत नानक जोगी प्रति नानक जोगी त्रिपिवन मीत राम कली महला पहला खट मट देही मन विरागे सोत सावध तुन अंतर जागे बाजिया न मेरा मन लीना गुरबचनी सच नाम पतीना प्राणी राम भगत सुख पाइये गुरमुख हर हर मीठा लाग है हर हर नाम समाये राव माया मोह विवर समाये सतगुर बेटे मेल मिलाए नाम रतन निर्मल हीरा तेत राता मेर मन धीरा मोहमे ममता रोग न लागे राम भगत जम का पो पागे जम जान लागे मोहे निर्मल नाम हृदय मह हृदय हर सोहे सब विचार पै निरंकारी गुरमत जागे दुमत पर हारी अंधन जाग रहे बिलाई जीवन मुगत गत अंतर पाई लिप्त गुफा में रहे निरारे तसर पंच सावध संघारे पर कर जाए न मन डुलाए सहज नंतर रहो समाये गुरमुख जाग रहे अवतूता साध बैरागी तत्परोता जग सुता मारे आवे जाए बेनगुर सबना सोजी पाए अन सब बाजे दिन राते अवगत की गत गुरमुख जाते तो जाने जा शब शानी एको रब रहा निर्बानी ही सुन सा माद सहज मन दाता तज हो लुभा एको जाता गो चेले अपना मन मानिया हा नानक दूजा मेर समान्या राम कली महला पहला साह गणना करे विचार साहे ऊपर एकंकार जिस गुर मिले सोई बे जाने गुरमत होए तो गुरमत होए ता हुक्म शाने झूठ ना बोल पांडे सच कहिए हमें जाए सब कर लही राव गण ज्योतक कांडी कीनी पढ़े सुनावे तत न चीने सबसे ऊपर गुर सब विचार होर कथनी बदो ना सगनी शार नावे तो वे जो सैला बिना रातो मैलो मैला गर्भ निवार मिले प्रभ सार्थ मुक्त प्राण जप आहार करतार्थ बाचे बाद ना वेद विचारे अब डुबे के पितरा तारे घट घट ब्रह्म चीने जन कोए सदगु मिले ता सोजी होए गंत गणिये सहसा दुख जिए गुर की सरन पवे सुख थिए कर अपराध सरन हम आया हर गुर भेटे पुरख माया गुर सारन आये ब्रह्म न पाये परम भुलाये जन मर आये जमदर वाधो मरे बिकार नारि दे नाम न ना शब्द आचार एक वादे पंड मिसर विखावे दुबदा राते महल न पावे जिस गुर प्रसादी नामदार कोट मदे को जान अपार एक बुरा भला सच एके बूज ज्ञानी सतगुर के टेके गुरमुख बेली एको जानिया अब जाना मेट समाणिया जिनके हृदय एकंकार सर्व गुणी साचा विचार गुर के पाणे कर्म कमावे नान साचे सा समावे राम कली महला पहला हठ नार कर काशिजे भारत तपत कर मन पीजे राम नाम सब न पूजे गुर सेव मना हर जान संकीजे है जमदार जो है नहीं साके सब पर डस ना सके हार का रस पीजे राम बात बड़े रागी जग पीजे तय गुण बिख्या जन मरीजे राम नाम बिन सुदुख सहीजे चार से पवन सिंहासन बीज पीजे न्योजी कर्म खाट कर्म करीजे राम नाम बिन व्यथा सास लीजे अंतर पांच गण के ओ तीजे अंतर चोर के ओ साध लहीजे गुरमुख होए काया गढ़ दीजे अंतर मैल तीर्थ पर मीजे मां ने सुचा क्या सोच करीजे कित प्या दोस का को दीजे अन्ना खाए दे ही दुख दीजे है बिन गुर ज्ञान दे तृप्त नहीं थीजे मन जन्म जन्म रीजे है सतपुरुष संग तस जान कीजे मन हर राचे जही जन्म रीजे राम नाम बिन क्या कर्म कीजे दूंदर दूंदर पास्त रीजे तुर्की सेवा राम विजय नानक नाम मिले कृपा प्रभु की जय राम कली महला पहला अंतर पुत पुज अब न कोई जो जो कहिए सो प्रवत हो जुगो जुगंतर सब सच सोही उतर पालो अपना कोई ऐसा मेरा ठाकुर गह गंभीर जिन जपया तिन ही सुपाया हर के नाम ना लगे जम तीरा नाम रतन हीरा अनमोल साचा साहब अमृत ओला जीवा सूची साचा बोल कर दर साचा नाही रोल एक बन मैं वैसे डुगर स्थान नाम विसार पचे मान नाम बिना क्या ज्ञान ध्यान गुरमुख पावे दरगे मान हठ अहंकार करे नहीं पावे पाठ पढ़े ले लोग सुनावे तीर्थ परमस ब्याद न जापे ना बिना कह सुख पावे जतन करे बिंद किवे न रहाए मन डोले नरके पाई जमपुर बादो लहस जाई बिन नावे जो जाल बल जाई से सदके ते मुन जे देवा आठ अंगार न तृप्तावे पेवा सब जारे गहे गुर मसेवा मन तन निर्मल अपमान अपेवा कर मिले पावे सच नाओ तुम सर नागत हर हुस पाओ तुम ते उपजो भगति पाओ जप जापियो गुरमुख हर नाओ हमें गर्व जाए मन पीने झूठ न पावस पखंड कीने बिन गुर शब्द नहीं कर बार नान गुरमुख तत् विचार राम कली महला पहला
1: तन धन देख गर्व गया कनक काम नहीं सियो हेत वधाए कि नाम सारे गर्व की नाम सारे भर गया रहा जात सत संज सिया ना राख्या प्रेत पिंजर मैं काष्ट भया पुन दा निशना न संजम साध संगत बिन बाद जया लालच लागे नाम मिसारियो आवत जावत जन्म गया जा जम ताए केस गह मारे सुरत नहीं मुख काल गया अहनस निंदा तात पराई हृदय नाम न सर्व दया बिन गुर शब्द न गत पत पावे राम नाम बिन नरक गया खिन मैं वेस करै नटुआ जो मोह पाप मैं गलत गया इत उत माया देख पसारी मोह माया कै मगन भया करै बिकार विथार कन्हेरे सुरत शब्द बिन भरम पया हम मैं रोग महा दुख लागा गुरमत ले वो रोग गया सुख संपत को आवत देखै सुख संपत को आवत देखै साकत मन अभिमान पया जिसका एवो तन धन सो फिर लेवै अंतर सहसा दुख पया अंत काल किछ साथ न चालै जो दिसै सब दिसै मया आद पुरख परम्पर सो प्रभ हर नाम हृदय लै पार पया मोए को रोवै किसै सुनावै पैसा ग्रसराल पया देख को टंब माया ग्रह मंदर साकत जंजाल पराल पया जा आए ता तने पठाए चाले तने बुलाए लिया जो किश करना सो कर रहया बख्शन हारे बख्श लिया जिन एह चाखिया राम रसायन तिन की संगत खोज पया रिद सिद्ध बुद्ध ज्ञान गुरु ते पाया मुक्त पदार्थ शरण पया दुख सुख गुरमुख सम कर जाना हरक सोग ते बिरकत पया आप मार गुरमुख हर पाए नानक सहज समाय लिया राम करी दखनी मला पहला जात सतसन जम साज दृढ़ाया साज शब्द रस लीना मेरा गुर दयाल सदा रंग लीना एनस रहर एक लिव लागी साजे देख पतीना रहो रह गगन पुर दृष्ट समैसर अनहत शब्द रंगीना सत बंद कुपीन भर पुर लीना जेवा रंग रसीना मिलै गुर साचे दिन रच राचे किरत विचार पतीना एक मैं सर्व सर्व मैं एका ए सत गुर देख दिखाई जिन की ए खंड मंडल ब्रह्मंडा सो प्रभ लखन न जाई दीपक ते दीपक प्रगास्या त्रिभवन जो दिखाई सच्चा तख्त सच मैली बैठे निरपौ ताड़ी लाई मोहे गया बैरागी जोगी काट काट के गुरी वाई नानक शरण प्रभु की छूटे सतगुर सच सिखाई राम करी मला पहला ओ हट हस्त मड़ी कर छाया तरन गगन कल तारी गुरमुख केती शब्द उधारी संतो रहो ममता मार हम मैं सुख है त्रिभवन जो तुम्हारी मनसा मार मन मैं राख है सतगुर शब्द विचारी सिंगी सुरत जनाहत वाजै कड़ कड़ जो तुम्हारी पर पंच बेण तही मन रखिया ब्रह्म अगन पर जारी पंच तत् मिल एनस दीपक निर्मल ज्योत बारी राव सस लोके एव तर किंगुरी वाजै शब्द निरारी शिव नगरी मैं आसन यो दू लख गम पारी काया नगरी एह मंद राजा पंच वसै विचारी शब्द रवै आसन

ब्रह्मा विष्णु महेश एक मूर्त आपे कर्ताकारी काया सोत रह भव सागरा तुम तत् विचारी गुर सेवा ते सदा सुख पाया अंतर शब्द रव्या गुणकारी आपे मेल ले गुण दाता मैं तृष्णा मारी त्रै गुण मेटे चौथा वरता एहा भगत निरारी गुरमुख जोग शब्द आत्म चीन हृदय एक मुरारी मनुआ अस्थिर

जत सत शब्द विचारी शब्द मरे मन मारे अवधु जोग जुगत विचारी माया मोह पवजल है अवधु शब्द तरह कुल तारी शब्द सूर जुग चारे अवधु बाणी भगत विचारी एह मन माया मोहया अवधु निकस शब्द विचारी आपे बख्श बेल मिलाए आपे बख्शे मेल मिलाए नानक शरण तुम्हारी राम कली मला तीजा अष्टपदिया एक ओंकार सतगुर प्रसाद सर्वै दिया मुद्रा कन्नी पाए जोगी खिंदा कर तू दया आवन जान विभूत लाए जोगी ता तीन भवन जन लया ऐसी किंगुरी वजाए जोगी जित किंगुरी अनहद वाजै हर स्यो रह लिव लाए रहो सत संतोख पत कर झोली जोगी अमृत नाम भुगत पाई ध्यान का कर डंडा जोगी सिंगी सुरत बजाई मन दृढ़ कर आसन बैस जोगी ता तेरी कलपड़ा जाई काया डगरी बह मंगण चढ़ै जोगी ता नाम पल्लै पाई इत के गुरी ध्यान ना लागै जोगी ना सच पल्लै पाए इत के गुरी शाद ना आवै जोगी अभिमान ना विचो जाए पाओ पाओ दोए पत लाए जोगी एओ शरीर कर डंडी गुरमुख हो वै ता तंती वाजै इन बिद तृष्णा खंडी हुकुम बुझै सो जोगी कहिए एक स्यो चित लाए सहसा टूटै निर्मल हो वै जोग जुगत एव पाए नंदरी आवदा सब किछ बिनसै हर से ती चित लाए सतगुरु नाल तेरी भाव नी लागै ता ए सो जी पाए एओ जोग ना हो वै जोगी जे कुटंब छोड़ पर भवन करै ग्रह शरीर में हर हर नाम गुरपुर साधी अपना हर प्रभ लह है एह जोगत मिट्टी का पुतला जोगी इस मह रोग वड़ा तृष्णा माया अनेक जतन पेख करे जोगी रोग ना जाए गवाया हर का नाम औखद है जोगी जिसनो मन वसाए गुरमुख होवै सोई बूझै जोग जुगत सो पाए जोगै का मार्ग बिखम है जोगी जिसनो नजर करे सो पाए अंदर बाहर एको वेखै विचो परम चुकाए विण वजाई किंकुरी वाजै जोगी सा किंकुरी वजाए कह नानक मुक्त होवै जोगी साचे रह है सुमाए राम कली मला तीजा भगत खजाना गुरमुख जाता सतगुर बूझ बुझाई संतो गुरमुख दे वड़ियाई रहो सच रहो सदा सहज सुख उपजै काम क्रोध विचो जाई आप छोड़ नाम लिव लागी ममता शब्द जलाई जिसते उपजै तिसते बिन सह अंते नाम सिखाई सदा हजूर दूर नह देखो रचना जिंदर चाई सच्चा शब्द रवै कड़ अंतर सच्चे स्यो लिव लाई सत्संगत मह नाम निर्मोलक वड्डे भाग पाया जाई परम ना भूलो सतगुर सेवो मन राखो एक ठाई मिन नावै सब भूली फिर दी बिरथा जन्म गवाई जोगी जोगत गवाई हंडै पाखंड जोग ना पाए शिव नगरी मैं आसन बैसै गुर शब्दी जोग पाए तातुर बाजी शब्द निवारे नाम बसै मन आई एओ शरीर सरवर है संतो इशनान करे लिवलाई नाम इशनान करै

ब्रह्मा विष्णु महेश त्रै मूर्त त्रिगुण परम भुलाई गुर प्रसादी त्रिकुटी छूटै चौथै पद लिवलाई पंडित पढ़ै पढ़वाद वखाड़ै जिन्ना बूझ ना पाई बिख्या माते परम भुलाए उपदेश कह है किस पाई भगत जिना की उत्तम बाणी जुग जुग रही समाए बाणी लागै सो गत पाए शब्दे सच समाई आया नगरी शब्दे खोजे नाम नवंग निद पाई मनसा मार मन सहज समाणा बिन रसना उस्तत कराई लोयण देख रहे बिस्मादी चित अदिष्ट लगाई अदिष्ट सदा रह निरालम ज्योति ज्योत मिलाई हो गुरसालाही सदाया पड़ा जिन साची बूझ बुझाई नानक एक है बेनंती ना वो गत पत पाई राम करी मल्ला तीजा हर की पूजा दुलंब है संतो कहना कछु ना जाई संतो गुरमुख पूरा पाई नामो पूज कराई रहो हर बिन सब किछ मैला संतो क्या हो पूज चढ़ाई हर साचे भावै सा पूजा होवै पहाड़ा मन वसाई पूजा करै सब लोक संतो मन मुख थाए ना पाई शब्द मरै मन निर्मल संतो ए पूजा थाए पाई पवित्र पावर से जल साचे एक शब्द लिवलाई बिरडावै होर पूजना होवी परम भुली लोकाई गुरमुख आप पछाड़ै संतो राम नाम लिवलाई आपे निर्मल पूज कराए गुर शब्दी थाए पाए पूजा करै पर बिद नहीं जाड़ै दूजै भाए मन लाई गुरमुख होवै सो पूजा जाड़ै भाणा मन वसाई पाणे ते सब सुख पावै संतो अंते नाम सिखाई अपना आप ना पछाड़ै संतो कूड़ करै वड़ियाई पाखड की न जम नहीं छोड़े ले जासी पत गवाई जिन अंतर शब्द आप शाड़े गत बात गत बित तिन ही पाई ए बनवा सुर सुबाद लगावे ज्योति ज्योत मिलाई सुड़ सुड़ गुरमुख ना वखाड़े सतसंगत मिलाए गुरमुख गावे आप गवावे दर सच है शोभा पाई साची बाड़ी सच वखाड़े सच नाम लिवलाई पै पंजन अत पाप दे खजल मेरा प्रभ अंत सिखाई सब किश आपे आप वरतै नानक ना वड़ियाई राम करी भला तीजा अब कुचल कुचील अत अभिमानी मिल शब्दे बैल उतारी संतो गुरमुख नाम निस्तारी सच्चा नाम वस्या खड़ अंतर करता है आप सवारी रहो पारस पर से फिर पारस होए हर जियो अपनी कृपा धारी एक पेख करै फिरै अभिमानी तिन जो है बाजी हारी एक अर दिन भगत करै दिन राती राम नाम और धारी अंत राते सहजे माते सहजे हमें मारी पै बिन भगत न होई कब ही पै पाए भगत सवारी माया मोह शब्द जलाया ज्ञान तत विचारी आपे आप कराए करता आपे बख्श पंडारी तिस क्या गुणा का अंत ना पाया हों गावा शब्द विचारी

मला पंजवा जी जान सब पेखिया प्रभु सगल तुम्हारी धारणा एह मन हर कै नाम धारणा रहा फिर मैं थाप यो थापे कुदरत सब कर दे के कारणा काम क्रोध लोभ झूठ निंदा साधु संग बेदारणा नाम जपत मन निर्मल होवे सुखे सुख गुदारणा भगत शरण जो आवे प्राणी दिस इहा उहा ना हारणा सुख दुख इस मन की बिरथा तुम ही आगे सारणा तू दाता सबना जी आगा आपर किया पालना अनेक बार कोट जन ऊपर नानक वंजै वारणा राम करीमला पंजवा अष्टपद एकंकार सतगुर प्रसाद दर्शन पेटत पाप सब नासै हर स्यो दे मिलाई मेरा गुर परमेश्वर सुखदाय पार ब्रह्म का नाम दृढ़ाए अंते होए सिखाई रहो सगल दुख का डेरा पन्ना संत तुर मुख लाई पतत पुनीत किए खिन पीतर अज्ञान अंधेर मन्याई करण कारण समरथ स्वामी नानक तिस शरणाई बंदर तोड़ चरण कमल दृढ़ाए एक शब्द लेवलाई अंध कु बिखिया ते काढ़ियो साच शब्द बण आए जन मरण का चूका सहसा चूका बाहुल कतो न ताई नाम रसायण एवं मंदराता अमृत पी तृपताई संत संग मिल कीर्तन गाया निचल वस्या जाई पूरा गुर पूरी मत दीनी हर बिन आन ना भाई नाम निधान पाया वड़ भागी नानक नरक न जाई काल सियानप उक्त न मेरी पूरे गुरु कमाई जात जप तप संजम सोच है सोई आपे करे कराई पुत्र कलतर महा बिखिया मैं गुर साचै लाए तराई अपने जीत है आप संभाले आप लिए लड़ लाई साच धर्म का बेड़ा बांधया पवजल पार पवाई बेशुमार बेअंत स्वामी नानक बल बल जाए अकाल बूरत अजूनी सभो अकाल बूरत अजूनी सभो कल अंधकार दी पाए अंतर जामी जिन का दाता देख तृप्त गाई एक कार दर जदर पाओ सब जल थल रहे आसमाई भगत दान भगता को दीना हर नानक जा चै माई राम करी मला पंजवा श्लोक सिखो शब्द प्यारे हो जन मरण की टेक मुख उजल सदा सुखी नानक से मरत एक मातर राता राम प्यारे हर प्रेम भगत बण आई संतो सतगुर खेप निबाही संतो हर नाम लाहा दास को दिया सगली तृष्ण ओलाही संतो रहा खोजत खोजत लाल एक पाया हर कीमत कहण ना जाई संतो जरन कवल स्यो लागो ध्यादा सच है दर्श सुबाई संतो गुण गावत गावत फै निहाला हर सिमरत तृप्त अघाई संतो आत्म राव रव्या सव्यंतर कत आवै कत जाई संतो आज गादी है पी हो सी सब जिया का सुखदाई संतो आप पे अत नहीं पाई है पूर है सब ठाई संतो बीत साजर बाल जोबर सुत हर नानक बाप मेरी माई संतो राव करी वल्ला पंजवा मन बच क्रम राम नाम जितारी कुहमन केर महा अत बिखड़ी गुरमुख नानक पार उतारी राव अंतर सूखा बाहर सूखा हर जप बल भय दुष्टारी जिस ते लागे तै निवार प्रभ जियो अपनी कृपा धारी उदरे संत परे हर शरणी पच बिर से महाअकारी साधु संगत ए फल पाया एक केवल नावे अधारी ना कोई सूर ना कोई हीणा सब प्रगटी जोत तुम्हारी तुम समरथ कथ गोचर रव्या एक मुरारी कीमत कौड़ करे तेरी करते प्रभ अंत ना पारा वारी नाम दान नानक वड़े आई तेरा संत जनारे नारी राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया सह सेती मन वजिया वाधाइया राग रतन परवार परियां शब्द गावण आईया शब्द तंगावो हरि के राम मंजनी वसाया कह नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया
ਏ ਮਨ ਮੇਰੇ ਆ ਤੁਸਤਾਰੋ ਹਰ ਨਾਲੇ ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਣਾ ਅੰਗੀਕਾਰ ਉਹ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਣਾ ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰਾਤ ਸਵਾਮੀ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸੁਧਾਰੋ ਹਰ ਨਾਲੇ ਸੱਚ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰਾ ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇਹ ਸੋ ਪਾਵੇ ਸਦਾ ਸਿਫ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ ਨਾਮ ਜਿਨ ਕਹਿ ਮਨ ਵਸਿਆ ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਘਰ ਤੇਰਾ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਰਾਇਆ ਧਾਰੋ ਸਾਚ ਨਾਮ ਧਾਰ ਮੇਰਾ ਜਿਨ ਭੁੱਖਾ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਵਿੱਟੋ ਜਿਸ ਦੀ ਆਏ ਵੜੇ ਆਈਆਂ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਧਰੋ ਪਿਆਰੋ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਰਾਇਆ ਧਾਰੋ ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ ਕਰ ਸੁਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਧਾਰੀਆ ਪੰਜ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕੋ ਸਿਨਾਮ ਹਰ ਕਹਿ ਲਾਗੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤਹਿ ਸੁਖ ਹੋਆ ਤਿਤ ਕਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ ਸੱਚ ਲਵੈ ਬਿੰਦੇਹ ਨਿਮਾਣੀ ਦੇਹ ਨਿਮਾਣੀ ਲਵੈ ਬਾਜੋ ਕਿਆ ਕਰੇ ਵੇਚਾਰੀਆਂ ਤੁਧ ਬਾਰ ਸਮਰੱਥ ਕੋਏ ਨਾਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਬਨਵਾਰੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਥਾਓ ਨਾਹੀ ਸ਼ਬਦ ਲਾਗ ਸਵਾਰੀਆ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਲਵੈ ਬਾਜੋ ਕਿਆ ਕਰੇ ਵੇਚਾਰੀਆਂ ਆਨੰਦ ਆਨੰਦ ਸਭ ਕੋ ਕਹਿ ਆਨੰਦ ਗੁਰੂ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣੇ ਆਨੰਦ ਸਦਾ ਗੁਰ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਪਿਆਰਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਿਲ ਵਿਖ ਕੱਟੇ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਸਾਰਿਆ ਅੰਦਰੋ ਜਿਨ ਕਾ ਮੋਹ ਟੁੱਟਾ ਜਿਨ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਸਚੈ ਸਵਾਰਿਆ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਇਹੋ ਆਨੰਦ ਹੈ ਆਨੰਦ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਬਾਬਾ ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇਹ ਸੋਈ ਜਨ ਪਾਵੈ ਪਾਵੇ ਤਾਂ ਸੋ ਜਨ ਦੇਹ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਆ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਇੱਕ ਫਰਮ ਪੂਲੇ ਫਿਰੈ ਦੈ ਦਿਸ ਇੱਕ ਨਾਮ ਲਾਗ ਸਵਾਰਿਆ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਮਨ ਭਇਆ ਨਿਰਮਲ ਜਿਨਾ ਭਾਣਾ ਭਾਵੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਦੇਹ ਪਿਆਰੇ ਸੋਈ ਜਨ ਪਾਵੇ ਆਵੋ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਕਥ ਕੀ ਕਰੈ ਕਹਾਣੀ ਕਰੈ ਕਹਾਣੀ ਕਥ ਕੇਰੀ ਕਿਤ ਦੁਆਰਾ ਪਾਈਐ ਤਨ ਮਨ ਤਨ ਸਭ ਸੌਂਪ ਗੁਰ ਕੋ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਪਾਈਐ ਹੁਕਮ ਮੰਨੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਰਾ ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਕਥਿਓ ਕਸ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਮਨ ਚੰਚਲਾ ਚਤੁਰਾਈ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਆ ਚਤੁਰਾਈ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਿਨੈ ਤੂੰ ਸੁਣ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਏ ਮਾਇਆ ਮੋਹਣੀ ਜਿਨ ਏਤ ਭਰਮ ਭੁਲਾਇਆ ਮਾਇਆ ਤਾਂ ਮੋਹਣੀ ਤਨੈ ਕੀਤੀ ਜਿਨ ਛਗੋਲੀ ਪਾਈਆ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਤਿਸੈ ਵਿਟੋ ਜਿਨ ਮੋਹ ਮੀਠਾ ਲਾਇਆ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਚੰਚਲ ਚਤੁਰਾਈ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਆ ਏ ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸੱਚ ਸੰਭਾਲੇ ਇਹ ਕੁਟੰਬ ਤੁਝੇ ਦੇਖਦਾ ਚੱਲੈ ਨਾਹੀ ਤੇਰਾ ਨਾਲੇ ਸਾਥ ਤੇਰਾ ਚੱਲੈ ਨਾਹੀ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਚਿਤ ਲਾਈਐ ਐਸਾ ਕੰਮ ਮੂਲੇ ਨਾ ਕੀਚੈ ਜਿਤ ਅੰਤ ਪਛੋਤਾਈਐ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਤੂੰ ਹੋਵੈ ਤੇਰਾ ਨਾਲੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਪਿਆਰੇ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸੱਚ ਸੰਭਾਲੇ ਅਗਵ ਗੋਚਰਾ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਿਨੈ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਤੂੰ ਜਾਣ ਹੈ ਜੀ ਜਾਂ ਸਭ ਖੇਲ ਤੇਰਾ ਕਿਆ ਕੋ ਆਖ ਵਿਖਾੜੇ ਆਖੇ ਤਾਂ ਵੇਖੈ ਸਭ ਤੂੰ ਹੈ ਜਿਨ ਜਗ ਤੇ ਪਾਇਆ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਸਦਾ ਗਮ ਹੈ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ ਸੁਰ ਨਰ ਮੁੰਜਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੋਜ ਦੇ ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ ਪਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਿੰਨੀ ਸੱਚਾ ਮਨ ਵਸਾਇਆ ਜੀ ਜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਦਿਓ ਪਾਏ ਇੱਕ ਵੇਖ ਪਰਸੜ ਆਇਆ ਲਭ ਲੋਭ ਕਾਰ ਚੁਕਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਲਾ ਪਾਇਆ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪ ਤੁਠਾ ਤਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ ਭਗਤਾ ਕੀ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ ਚਾਲਾ ਨਿਰਾਲੀ ਭਗਤਾ ਕੇਰੀ ਬਿਖਮ ਮਾਰਗ ਚੱਲਣਾ ਲਾਭ ਲੋਭ ਹੰਕਾਰ ਤਜ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬਹੁਤ ਨਾਹੀ ਬੋਲਣਾ ਖੰਨਿਓ ਤਿੱਖੀ ਵਾਲੋ ਨਿੱਕੀਏ ਤੁਮਾਰਗ ਜਾਣਾ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜਿਨ ਆਪ ਤਜਿਆ ਹਰ ਵਾਸਨਾ ਸਮਾਣੀ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਚਾਲ ਭਗਤਾ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਨਿਰਾਲੀ ਜੋ ਤੂੰ ਚਲਾਏ ਤੇ ਚੱਲੈ ਸਵਾਮੀ ਹੋਰ ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਜੇ ਤੂੰ ਚਲਾਏ ਤੇ ਵੈ ਚੱਲੈ ਜਿੰਨਾ ਮਾਰਗ ਪਾਵਹਿ
कर कृपा जिन नाम लाए से हर हर सदा ते आव है जिसनो कथा सुनाए अपनी से गुरुद्वार सुख पाव है कह नानक सच्चे साहिब ज्यो पावे ते वै चलाव है ए सोला शब्द सुहावा शब्दो सहावा सदा सुहेला सतगुरु सुनाया एह तिन कह मन वसया जिन धुरो लिखिया आया एक फिरे कढेरे करै गल्ला गल्ली कने ना पाया कह नानक शब्द सोहला सतगुरु सुनाया पवित होए से जना जिनी हर त्याया पवित होए गुरमुख जिनी त्याया पवित माता पिता कुटुंब सहित सो पवित संग सबाइया कहंदे पवित सुन दे पवित से पवित जिनी मन वसाया कह नानक से पवित जिनी गुरमुख हर हर त्याया करमी सहज न उपजै विण सहजै सहसा न जाए नह जाए सहसा कितै संजम रहे करम कमाए सहस जियो मिलीण है कि संजम तोता जाए मन धोवो तो शब्द लागो हर स्यो रहो चित लाए कह नान गुर प्रसादी सहज उपजै यो सहसा इव जाए जियो मैले बारो निर्मल जियो ता मैले तिनी जन्म जू है हारिया ए तिसना वड्डा रोग लगा मरन मनो विसारिया वेदा महना उत्तम सो सुने ना ही फिरै जो बे तालिया कह नानक जिन सच तजिया कूड़े लागे तिनी जन्म जू है हारिया जियो निर्मल बारो निर्मल बारो ता निर्मल जियो निर्मल सतगुर ते करनी कमाणी कूड़ की सोए पहुंचे नाही मरसा सच माणी जानवर तन जिनी खटिया भले सेवन जारे कह दारिक जिन मन निर्मल सुधार है गुर नाले जे को सिख गुरु सेती सनमुख होवै होवै ता सनमुख सिख कोई जियो रह है गुर नाले जियो रह है गुर नाले गुर के चरण हृदय त्याए अंतर आत्मा संभाले आप छड़ सदा रह परण गुर बिन अवर न जाने कोए कह नानक सुनो सुनतो सो सिख सनमुख होए जे को गुर ते बेमुख होवे मेरे सत गुर मुक्त ना पावे पावे मुक्त ना होर थै कोई पछो बबे किया जाए अनेक जूनी भरव आवे विण सत गुर मुक्त ना पाए फिर मुक्त पाए लाग चरणी सत गुरु शब्द सुनाए कह नानक विचार देखो विण सतगुर मुक्त ना पाए आवो सिख सतगुरु के प्यारे हो गावो सच्ची बाणी बाणी ता गावो गुरु केरी बाणिया सिर बाणी दिन को नदर कर्म होवे हृदय तना समाणी पीवो अमृत सदा रहो हर रंग जपियो सारिंग पाणी कह नानक सदा गावो ए सच्ची बाणी सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी बाणी ता कच्ची सतगुरु बाजो होर कच्ची बाणी कहंदे कच्चे सुनदे कच्चे कच्ची आख वखाणी हर हर नित करै रसना कहया कछु ना जानी चित जन का हिर लया माया बोलन पैर वाणी कह नानक सतगुरु बाजो होर कच्ची बाणी गुर का शब्द तन है हीरे जित जड़ाओ शब्द रतन जित मन लागा एह हो आसमाओ शब्द सेती मन मिलिया सच्चा लाया पाओ आपे हीरा रतन आपे जिसनो दे बुझाए कह नानक शब्द रतन है हीरा जित जड़ाओ शिव शक्त आप उपाय कह करता आपे हुक्म वरताए आप वेखै गुरमुख किसै बुझाए तोड़े बंधन होवै मुक्त शब्द मन वसाए गुरमुख जिसनो आप करे सो होवै एक सियो लिव लाए कह नानक आप करता आपे हुक्म बुझाए सिमृत शास्त्र पुन पा विचार दे तत्तै सार ना जानी तत्तै सार ना जानी गुरु बाजो तत्तै सार ना जानी तेही गुणी संसार प्रभ सुता सुतिया रहण विहानी गुर कृपा ते से जन जागे जिन हर मन वसिया बोले अमृत बाणी कह नानक सो तत पाए जिसनो हर दिन हर लेव लागे जागत रहण विहानी माता के उदर मह प्रतिपाल करे सो क्यों मनो विसारिया मनो क्यों विसारिया ए वरदाता
जे अगर मैं आहार पहुंचावे उसनो केहो पोह न सकी जिसनो अपनी लिव लावे अपनी लिव आपे लाए गुरमुख सदा संभालिया कह नानक ए वरदाता सो क्यों मनो विसारिया जैसी अग्न उधर मैं तैसी बाहर माया माया अग्न सब इको जेही करता खेल रचाया जात सुपाणा ता जम्मिया परिवार भला पाया लिव छुड़की लगी तृष्णा माया अमर वरताया एह माया जित हर विसरै भो उपजै भाव दूजा लाया कह नानक गुर प्रसादी जिना लिव लागी तिनी विचे माया पाया हर आप मुलक है मुल ना पाया जाए मुल ना पाया जाए किसे विटो रहे लोक विल लाए ऐसा सतगुर जे मिलै तिसनो सिर सौपिया विचो आप जाए जिसदा जियो तिस मिल रहै हर वसै बद आए हर आप मुलक है भाग तिना के दार का जिन हर पल लै पाए हर रास मेरी मन वण जारा हर रास मेरी मन वण जारा सतगुर ते रास जानी हर हर नित जपियो जियो लाह खट्यो दिहाड़ी यो धन तिन्ना मिलया जिन हरे आपे भाणा कह नानक हर रास मेरी मन हो आवण जारा इरसना तू अंदरस राज रही तेरी प्यास ना जाए प्यास ना जाए होरत कितै जिचर हर रस पल्लै ना पाए हर रस पाए पल्लै पिए हर रस बहुण न तृष्णा लाग आए यो हर रस करमी पाई सतगुर मिलै जिस आए कह नानक होर अंदरस।

हर हर कथा पढ़ै प्राण जियो। नर कथा पढ़िया हर नाम सुनिया बेबाण, हर रंग गुर पावे पिंड पतल किरिया दीवा फुल हर सर पावे। हर पाया सतगुर बोलिया, हर मिलिया पुरख सुजान जियो। रामदास सोडी तिलक दिया, गुर शब्द सच निशान जियो। सतगुर

न सकंदा स्वाओ न जाने मूड़ा माया मदमाता हुची बाता मिर न जाई परम तड़ा कौन नानक गुरबिन नाही सूजै हर साजन सब मैं।

तारा प्र पारा घट घट अंतर सोहनिया एक दासी तारी सबल पसारी जी जंत लै मोहनिया जिसनों राख है सो सच पाख है गुर

अनहद तुनिया सोहलड़ा, अनहद वज शब्द गज नित नित जसै वधाई। सो प्रभ त्याई सब किछ पाई मरै नाम।

दिन सरैण चितारिया चरण कमल आधार जनका सरा माल मिलख भंडार नाम अनंत तरा नाम नर हर निदान जिनकै रस भोग एक नारायणा रस रूप रंग अनंत बिठल सास सास त्यायणा किल विख हरना नाम पुनः चरणा नाम जम की त्रास हरा बिनवंत नानक रास जन की चरण कमल आसरा गुण।

परमेश्वरा शब्द जाजक एक दाता करना मैं जगदीशरा साधु संत सुजान सोई जिसै प्रभु जी माने बिनवंत नानक।

सुख कनेरे राम सुख निदान मिलिया दुख हरिया कृपा कर प्रभ राखिया हर चरण लागा प्रभ पौ भागा हर नाम रसना पाखिया हर एक चितवै प्रभ एक गावै हर एक दृष्टि आया बिनवंत नानक प्रभ करी कृपा पूरा सतगुर पाया मिल रही है प्रभ साध जना मिल हर कीर्तन सुनिए राम दयाल प्रभु दामोदर माधो।

नाम शांत। प्रभु विपत निवारणो तिस बिन अवर ना कोई जियो। सदा सदा हर सिमरिय जल थल मैयल सोए जियो। जल थल मैयल पूर रहिया एक निमख मनो ना विसरै। गुरु चरण लागे दिन सुभागे सर्व गुण जगदी।

मन मिलन की प्रभ प्यास जियो बिनवंत नानक धार कृपा मिलो प्रभ गुणदास जियो सलोक जल जलन बुझी शीतल पे मन तन उपजी शांत नानक प्रभ पूर्ण मिले दतिया बनसी प्रांत साध पट

मन बंशत फल पाया हर नानक नाम पने छंत हिम कर रुत मन भावती माग फगण गुणवंत जियो सुखी सहेली गाओ मंगलो ग्रह आए हर कंत जियो ग्रह लाल आए मन ते आए सेज सुंदर सोहिया वन त्रिण त्रिपवन पे हरिया देख दर्शन मोहिया।

छंत चरण विराजत सब ऊपरे मिटिया सगल कलेश जियो आवण जावण दुख हरे हर भगत किया प्रवेश जियो हर रंग राते सहज माते तिल न मन ते बिसरै तज आप शरणी परे चरणी सर्व गुण जगदीश्वरै गोविंद गुण निध श्री रंग स्वामी आदको आदेश जियो बिनवंत नानक मया तारो जुग जुगो एक वेश जियो रामकली महला पहला दखणी ओंकार एक ओंकार।

गवाया गुरु सच कहया अमृत लया मन तन साच सखाया आपे गुरमुख आपे देवै आपे अमृत पी आया एको एक कह सब कोई हो मैं गर्भ व्यापै अंतर बाहर एक पछाण एओ कर महल सिन्यापै प्रभ नेड़ै हर दूर न जानो एको श्रिष्ट सबाई एक अंकार भर नहीं दूजा नानक एक समाई।

जान रहाई। एक चार रंग एक रूप, पौन पानी अग्नि स्वरूप। एको पवर पवै त्यो लोए, एको बुझै सूझै पत होए। ज्ञान ध्यान ले संसर रह, गुरमुख एक विरला को लह। जिसनों दे कृपा ते सुख।

उगवया स्वरूप दिखावै, कर कृपा अपने कर आवै, ऊनव बरसै नीजर तारा, उत्तम शब्द सवारण हारा, इस एके का जन प्यो आपे करता पे देओ, उगवै सुर सुर सिंगारै, उच्चो देख शब्द विचारै।

विदाता मन मुख सोए। प्रभ जग जीवन वरना कोए, नानक नाम रते पत होए। राजन राम रवै हितकार, रण में लुजै मनुआ मार। रात दिन अंत रह रंगराता।

बरतै को सोए, जिसनो कृपा करै तिस प्रगट होए, जुग जुग थाप सदा निरवैर, जन्म मरण नहीं तंदा तैर, जो दिसै सो आपे आप, आप उपाय आपे कठताप।

गुण में ज्ञान प्राप्त होए गुणदाता विरला संसार साची करनी गुर विचार अगम गोचर कीमतन।

नाथ जुनी अस्थिर चित समाध सगुनी हर नाम चेत फिर पवे न जुनी गुरमत सार होर नाम बेहुनी कर दर फिर थाकी बहुत तेरे जात संख्यांत नहीं मेरे किते मात पिता सुत तिया किते गुण चेले फुन हुआ।

चिंतत ही दिशा सब कोए, चेता एक ही सुख होए, चित वसैरा चहर नाए, मुक्त पया पत स्यों कर जाए, चीजै देख ले एक गंड, छया नित देखो जग हंड, तू पछाव जे सम कर जाने, बंधन काट मुक्त कर आने, छाया छूछी जगत पलाना, लिखिया किरत तुरे परवाना,

वै तोटा त्रिपम ठाकुर प्रीतम मोटा ठाको मनुआ राखो ठाए ठैक मोई अवगण पछताए ठाकुर एक सबाई नार बहुते वेश करे कुड़ियार पर कर जाती ठाकुर हाई मैल बुलाई ठाक न पाई शब्द सवारी साच प्यारी साई सुहागण ठाकुर तारी डोलत डोलत हे सुखी फटे चीर शिंगार ड्रापण तन सुख नहीं।

तिनकी तूड़ अगल अगोली है। संगत मेल मिलाओ मन दिया, गुरु अपने पाया निर्मल नाओ। जिन नाम दिया तिस सेव सा तिस बलिहार जाओ। जो सारे सोटा हसी तिस बिन वरना कोई गुर प्रसादी तिस।

मिल रही, जन्म मरण दुख निवार, नाना करत ना छुटिया, विण गुण जम पुर जाए, ना तिस एहो ना ओ है, अवगुण फिर पछताए, ना तिस ज्ञान ना ध्यान है, ना तिस धर्म ध्यान, विण

गुरमुख होए, निर्वाणी महापुरख की निज कर वासा होए। भन भन घड़िया कड़कड़ भजै, टाय सार उसरे टाहै। सर पर सुख है, पी पर भुख है, समरथ वे परवाह है। परम भुलाने पे दीवाने, बिन भागा क्या पाइया। गुरमुख ज्ञान डोरी प्रभ पकड़ी, जिन खिंचै तिन जाइया। हर गुण गाए सदा रंग राते, बौड़ ना पछो ताइया। पब्बै पालै गुरमुख बूझै, ता निज कर वासा पाइया। पब्बै पौजल मार्ग बिखड़ा, आस निरासा तरिया। गुर प्रसादी आपो चीनै, जीव त्या एव मरिया। माया माया कर मोए, माया किसै ना साथ। हंस चलै उठ डूमणो, माया भूली आथ।

खप गए खूहण लख असंख गणत न आवे क्यों गणी खप खप मोय बिसंख खासम पछाण अपना खूले बंद न पाए शब्द महली खरा तू खिमा सच सुख पाए खर्च खरा धन ध्यान तू आपे वसै शरीर मन तन मुख जापै सदा गुण अंतर मन तीर।

नाम संभालो नाम संग रहो, लाहा जग मैले सच्ची पट्टी सच मन पढ़िया शब्द सुसार, नानक सो पढ़िया सो पंडित बिना जिस राम नाम गलहार। राम कली महला पहला सिद्ध गोष्ठ एक ओंकार सात गुर प्रसाद, सिद्ध सभा कर आसन बैठे शांत सभा जयकारो, तिस आगे रह रास हमारी साचा अपर अपारो, मस्तक काढ़ धरी तिस आगे तन मन आगे दे, नानक संत मिले सच पाइए सहज पाए जस लेओ, क्या पविए सच सूचा होए साच शब्द।

हाट पटन कर गुरु दिखाया सहज सच वापारो, खंडत निंद्रा अल्पहारं नानक तत् विचारो। दर्शन पे करो जोगिंद्रा मुंद्रा चोली खिंता, बारह अंतर एक सरे वो खट दर्शन एक पंथा, इन बेद मन समझाइए पुरखा। बाहर चोट न खाइए नानक बोले गुरमुख बूझे, जोग जुगत इव पाइए अंतर शब्द निरंतर मुंद्रा। हम मैं ममता दूर करी काम क्रोध अहंकार निवारे, गुर के शब्द सो समझ परी खिंथा चोली परपुर।

काया कड़ासन मन जा गोटी सत संतोख संजम है नाल नानक गुरमुख नाम समाल कवन सो गुप्ता कवन सो मुक्ता कवन सो अंतर बाहर जगता कवन सो आवै कवन सो जाए कवन सो त्रिभवन रहे आसमाए घट घट गुप्ता गुरमुख मुक्ता अंतर बाहर शब्द सो जुगता मन मुख बिनसै आवै जाए नानक गुरमुख साथ समाए क्यों कर बांदा सरपण खादा क्यों कर खोया क्यों कर लादा क्यों कर निर्मल क्यों कर अंधियारा एहो तत् विचारा सो गुरु हमारा दुरमत बादा सरपण खादा मन मुख खोया गुरमुख लादा सतगुरु मिला अंधेरा जाए नानक हों मैं मेट समाए सुन निरंतर दीजै बंद उडै ना हंसा पड़ै ना कंध सहज गुफा कर जाना साचा नानक साचे भावै साचा किस कारण गृह तज्यो उदासी किस कारण हो भेख निवासी किस वखर के तुम वण जारे क्यों कर साथ लंघावो पारे गुरमुख खोजत भय उदासी दर्शन कहताई भेख निवासी साच वखर के हम वण जारे नानक गुरमुख उतरस पारे कित बिद पुरखा जन्म वटाया काहे को तुज एह मन लाया कित बिद आसा मनसा खाई कित बिद जोत निरंतर पाई बिन दंता क्यों खाई है सार नानक साचा करो बिचार सतगुर कह जन्मे गवन मिटाया अनहत राते एह मन लाया मनसा आसा शब्द जलाई गुरमुख जोत निरंतर पाई त्रै गुण मेटे खाई है सार नानक तारे तारनहार आद को कवन बिचार कथियले सुन कहा घर वासो ज्ञान की मुद्रा कवन कथियले घट घट कवन निवासो काल का ठींगा ज्यो क्यों जलाईले क्यों निरभौ कर जाइए सहज संतोख का आसन जाना क्यों छेदे बैराइए गुर कै शब्द हो मैं बिख मारे ता निज कर हो वै वासो जिन रच रचया तिस शब्द पछाणै नानक ता का दासो कहां ते आवै कहां एहो जावै कहां एहो रह समाई शब्द को जो अर्थ आवै तिस गुर तिल नात माई क्यों तत्तै अवगत पावै गुरमुख लगै प्यारो आपे सुरता आपे करता कहो नानक।

पाया जाए। जुग जुगत सच रहस्य माए बारे मैं जोगी परमाए सन्यासी छह चार गुर के शब्द जो मर जीवै सो पाए मोख द्वार। बिन शब्द है सब दूजा लागे देखो हृदय विचार नानक वड्डे सेवड भागी जिनी सच रखे आय और तार। गुरमुख रतन लहै लिवलाए गुरमुख परखै रतन सुभाए गुरमुख साची कार कमाए गुरमुख साचे मन पति आए गुरमुख अलख लखाए तिस भावै नानक गुरमुख चोट ना खावै। गुरमुख नाम दान इशनान गुरमुख लागै सहज ध्यान गुरमुख पावै दरगा मान गुरमुख पाव पंजन प्रधान गुरमुख करनी कार कराए नानक गुरमुख मेल मिलाए। गुरमुख शास्त्र समृत वेद गुरमुख पावै घट घट भेद गुरमुख वैर विरोध गवावै गुरमुख सगली गणत मिटावै गुरमुख राम नाम रंग राता नानक गुरमुख खसम पछाता। बिन गुर पर मैं आवै जाए बिन गुर घाल न पवई थाए बिन गुर मनुआ अत डोलाए बिन गुर तृप्त नहीं बेखाए बिन गुर बिसियर दसै मर जवाट नानक गुर बिन काटे काट। जिस गुर मिलै तिस पार उतारै अवगुण मेटै गुण निस्तारै मुक्त महासुख सुख गुर शब्द विचार गुरमुख कदे न आवै हार। तन हटड़ी हु मन बन जारा नानक सहजे सच

सच मंत्र हिया शब्द वसै सच अंतर हिया तन मन शीतल रंग रंगिया काम क्रोध बिख अगन निवारे नानक नदरी नदर ने प्यारे नानक नदरी नदर प्यारे कवन मुख चंद हे वै कर छाया कवन मुख सूरज तपै तपाया कवन मुख काल जोहत नित रह कवन बुद्ध गुरमुख पत रह कवन जोत जो काल संघार बोलै बाणी नानक बीचार शब्द पाखत सस जोत अपारा सस कर सूर वसै मिटै अंधियारा सुख दुख सम कर नाम आधारा।

काल संतापे तत्तो तत् मिलै मन मानै दूजा जाय एकत कर आनै बोलै पवना गगन गरजै नानक निचल मिलन सहजै अंतर सुनंग बाहर सुनंग त्रिभुवन सुनम सुनंग चौथे सुनै जो नर जानै ताकु पाप न पुनंग घट घट सुन क जानै भयो आद पुरख निरंजन देओ जो जन राम जो जन नाम निरंजन राता नानक सोई पुरख विधाता सुनो सुन क है सब कोई अनत सुन कहाते होई अनत सुन रते से कैसे जिस ते उपजे तिस ही जैसे ओ जन्म न मरै न आवै जाहे नानक गुरमुख मन समझाहे नो सर सुपर नाओ सर सुपर दसवै पूरे तै अनहत सुन बजावै तूरे साचै राचे देख हजूरे घट घट साच रहया पर पूरे गुप्ती बाणी प्रगट होए नानक परख लै सच सोए सहज भाए मिलिया सुख होवै गुरमुख जागै नींद न सोवै सुन शब्द अपरंपर धारै कहते मुक्त शब्द निस्तारै गुर की दिख्या से सच राते नानक आप गवाए मिलन नहीं प्राते को बुद्ध चवावै सो कित ठाए क्यों तत न बूझे झोटा खाए जमदर बांधे कोय न जमदर बाधे कोय न राखै बिन शब्द ना ही पत साखै क्यों कर बूझे पावै पार नानक मनमुख ना बुझै गवार को बुद्ध मिटै को बुद्ध मिटै गुर शब्द बीचार सतगुर भेटै मोख द्वार तत नचीनै मनमुख जल जाए दुरमत बिछड़ चोटा खाए मन हुकम सबे गुण ज्ञान नानक दरगा पावै मान साच वखर तन

सुन स्वामी सच नानक प्रणवै, अपने मन समझाए गुरमुख शब्द सच लिव लागै, कर नदरी मेल मिलाए, आपे दाना आपे बीना पूरा भाग समाए। सो शब्द को निरंतर वास अलखं, जय देखा तै सोई, पवन का वासा सुन ने वासा काल कला तर सोई। नजर करे शब्द मघट मै वसै, विचो भरम गवाए, तन मन निर्मल निर्मल बाणी, नामो मन वसाए। शब्द गुरु पव सागर तरियै, तुत एको जाणै, चेहन वरन नहीं छाया माया, नानक शब्द पछाणै। त्रै सत उंगल वाई औदू, सुन सच आहारो, गुरमुख बोलै तत बिरोलै, चीनै अलख अपारो।

ओंकार सत गुर प्रसाद राम कली की वार महला तीजा। जो दै वीरै पूर बाणी की धुनी तो श्लोक महला तीजा। सतगुर सहजै दा खेत है जिसनो लाए, भाव ना बीजे ना उगवै नामे रह समाए। हमै एहो बीज है सहसा गया बिलाए, ना कुछ बीजे ना उगवै जो बख्शे सुखाए। अम्बै सिती अमरलिया बहुण ना निकसिया जाए, नानक गुरमुख चलत है वेखो लोका आए। लोके वेखै बपड़ा जिसनो सोजी नाहे, जिस वे खाले सो वेखै, जिस वसया मन माहे। महला तीजा। मन मुख दुख का खेत है, दुख बीजे दुख खाए, दुख विच जमै दुख मरै। हौ मैं करत विहाए, आवण जान सुजई, अंधा अंध कमाए। जो देवै तिसै न जाणै, दित्ते को लपटाए। नानक पूर्व लिखिया कमावना, अवर ना करना जाए। महला तीजा। सतगुर मिलिया सदा सुख, जिसनो आपे मिले सोए। सुख है हो विवेक है, अंतर निर्मल होए। अज्ञान का भ्रम कटिए, ज्ञान प्राप्त होए। नानक एको नदरिया।

पाए करे बड़ियाई नाता तू तथाई न पाई मुसलमान करे बड़ियाई बिन गुर पीरा को थाई न पाई राहु साए उठे को जाए करनी बाजो पिस्त ना पाए योगी का कर जो तुद साई तत्कार न कन मुद्रा पाई मुद्रा पाए फिर संसार जिथे किथे सिरजनहार जेते जी तेते बटाऊ किरी आई तिल न काऊ इथे जाने सो जाए सियाने होर फकड़ हिंदू मुसलमान सबना का दर लेखा होए कारनी वाजो तरे न कोई सचो सच बखाने कोए नानक अगे पुछ न होए पौड़ी हरका मंदर आखिए काया कोठ गढ़ अंदर लाल जबेहरी गुरमुखार नाम पढ़ हरका मंदर श्री रत सोहना हर हर नाम दिड़ मनमुख बाप खुआई उन माया

का कहना मूर्ख क्या लक्षण है, क्या मूर्ख का करना मूर्ख ओ हो, जे मुग्ध है अहंकारी मरना, ये कमाणे सदा दुख दुखी मह रहना,

जय सुरुवे भीख्या खाए अशीधर गए मलेश जाए रोवे राम ने काला पया सीता लक्ष्मण बिछड़ गया रोवे दस लंक गवाए जिन सीता दी डर उबाए रोवे पांडव पे मजूर जन करो स्वामी रहता दूर रोवे जन मेजा खोए गया एक ही कारण पापी पया रोहे शेख मशाए कबीर अंतकाल मत लागे पीर रोवे राजे कन्न पड़ाए कर कर मांगे भीखिया जाए रोवे कृपा सांचे तन जाए।

पवित्र पाणी संतोख भले हल हली में हाली चेतो चेता बतर संजोग नौ बीज बख्शीश बोल दुनिया सगल दरो नानक नदरी कर्म हुए जावे सगल योग पौड़ी मनुख नो गवार दूजे पाए बोले दूजे पाए सा दुख नित निर्भरोले गुरमुख नाम त्याइए माता कडोले अंतर प्रकाश कट जान नाल लद्दा टोले आपे परम भुलाएंदा किस कह न जाई वाह वाह सच्चे पातशाह तू सची नाई श्लोक महला दूजा नानक चिंता मत करहो चिंता तेसी है जल मह जो अंजान तो पाई इंतना फेरो जी दे उठे हट न चले ना को किस करे सौदा मुँह न हो वही ना को ले ना दे ਇਆਂ ਕਹਾਰ ਜੀ ਖਾਣਾ ਉਹ ਕਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਸਾਰਾ ਤੇ ਨਾ ਪੇ ਸਾਰ ਕਰੇ ਨਾਨਕ ਚਿੰਤਾ ਮਤ ਕਰੋ।

ना किसे आशा हाथ है कि उन राशा होए, क्या करे बपड़ी के जा भलाए सोए पौड़ी। त्रिक जीवन संसार सच्चे नाम बिन प्रवदाता दता निश्चली हो तन, सास सास राधे निर्मल सोए जन। अंतर जामी अगम रसना एक भन, रव रिया सरबत नानक बल जाई, वाह वाह सच्चे पातशाह तू सच्ची ना। श्लोक महला पहला, सर्व रहंस तुरे ही मेला, खसमे वह पाना सर्वर अंदर हीरा मोती, सुहांसा का खाना बगला काग न रही, सर्वर जे हो वह अत सियाणा, उना रिजक ना पैयो उठे उना होरो खाना। सच कमाणे सचो पाए कूड़े गूड़ा माणा, नानक तिन कहो सतगुर मिलिया, जिन्हें तुरे पया परवाणा। महला पहला, साह मेरा उजला जे कुछ चित करे, नानक सोई सेवी है सदा सदा जो दे, नानक सोई सेवी है जित सेवै दुख जाए, अवगुण बंजन गुण रव है मन सुख बस आए पौड़ी। आपे आप बरदा अवताड़ी लाए ने, आपे ही उपदेश दा गुण पत्याए ने, कापे उजड़ पाए ने, भगती लाए ने, जस आप जाए सो बसी, आपे नाए लाई अन।

तो ऐसा दतार मनो ना बिसरै घड़ी ना मोहत चसा तिसमें ना सरै अंतरवार संख्या को लोक करे जिस पद रखे आव सो भव जल तरे भक्त ज्ञानी तपा जिस कृपा करे सो पूरा प्रधान जिसनो बल तरे जिसे जराए आव सो जर जरे तिसी मिलिया सच मंत्र गुर मन तरै सरूक महला पंजवा तन सो राग सुरंगड़े आला पासो तिख जाए तन सो जन सुहावड़े जो

कर कृपा कृपाल आपे बक्षल सदा सदा जपी तेरा नाम सतगुरु पाए पै मन तन अंतरवास दुखा नाश होए अथ दे परख व्यापे पहो ना कोई गुण का वाद रहने ते काम लाए समझना कै संग होमे रोग जाए सर्वना त्रखासमे को रव रिहा गुरु प्रसादी सच सचो सच लया दया करो दयाल अपनी सिफत देहो दर्शन देख निहाल नानक प्रीत ए महला पंजवा एको जपिए मने वा एक स्पीशर ना एक स्यों कर पेरड़ी दूजी ना ही जाए को दाता मंगिए सब कुछ पल्ले पाए मन तन सास ग्रास प्राविको एक ध्याय अमृत

पौड़ी जब तक सन्न दया तरम जहती सो पाए जिस बुझाई अग्नि आप सो नाम जप त्याए अंतर जामी अगम पर खेख दिख दिखाए सासंत के आसर है प्रभ सिंह रंग लाए औगुण कट मुख उजला हर नाम तराए जल मन पौ कटी ओन फे जो न पाए अंधकूप ते काड़ियन लाड़ा फड़ाई नानक बख्श मलाई न रख

केता उठा फराए श्री सुठावन का भूमिले मार तरमाए सूरमुक्ता सती मुक्ता सूरमुक्ता सी मुक्ता ब्रह्म ज्ञान ले पाए सुभाद जस शांत ले सदा नेम राज जिस कर्म खोलिया ते लह पड़दा जिन गुर पै मनिया सुभाए गुरु मंत्र अवख नाम दीना जान नानक संगत जो ना पाए रे नारायण।

जिसे साज नवाजा तिसे सरो जनाहे आन रुति आन वो ये फल न भूले ताहे ने रे मन भत्र बीज जंडाओ बोई खेत बोए खेती लाए मनगा पर समय स्वभाव राव हुए खेड़ा परम मन का सदगुसानी जाए कर्म जिसको तुरो लिखिया सोई कर कमाए भाव लगा गुण सो काल पाई थाए खेत मेरे जमया ने घुटन का बुझा जाए पाया मूल पदार्थ हो छोड़ ना का दूजा एक कोना ने सुख पाया देव द्रय घाय मारू मन लपन जवा फूटो अंडा परम का मनी प्रगास काटी बेरी भगत गुरु किन्नी बंद खलास आवन जान रहे तत्कड़ा

मेरे सतगुर ही पात राख, कीता वेता भी पत भुरी बसुतर लिये खाक राहु, रूप रंग खुशियां मन भोगन दे ते सदा विकारा, हर का नाम धन कल्याण सुख सहजो सारा, माया रंग बिरंग खिने मैंजो बादर की छाया, छे लाल पै गूढ़े रंग राते जिन गुर मिला रर गाया, ऊच ऊच पार स्वामी आगम दरबारा, नाम बड़ियाई शोभा।

सब सराई राम नाम बिनया संकट में है कुआ बहुत सहाय। जो संपत अपनी करमा निशन में पई भराई को नानक जाय सोच रही मन हर जस कवि न गई मारू अल्ला ना माई में मन को मान न त्यागो माया के मद जन्म सरायो राम भजने लाग्यो राव जम को डंड परियो स्वरूप ताव सोवता जाग्यो कहाँ हो ताव के विषदाय छूट ना इन भाग्यो चिंता उपजी घट में जब गुर चरण लाग्यो सफल जन्म नानक तब हुआ जो प्रभु जस में पाग्यो मारु हट परियां वाला पहला कर पहला एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद।

बार कुर्मति जग जीवन मन बसे सकल उदाधार सचा वख नाम है सचा वपारा लाह नाम संसार है गुरमति विचारा दूजे पाए कर कुमार नेत्र थोटा सह सारा आची संस्थान सा सचे करवारा सचा पुण